नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और

0: आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

भारत की पावन भूमि वीरों और बलिदानियों की भूमि है। हमारे वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम से भारत का गौरव बढ़ाया है। आइए हम सब गर्व के साथ उन वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करें, जिनकी वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी।

मां नर्मदा केवल एक पावन नदी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और मोक्ष की अधिष्ठात्री हैं। उनकी निर्मल धारा जीवन में शांति, पवित्रता और नई ऊर्जा का संचार करती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ मां नर्मदा की महिमा को समर्पित इस मनमोहक प्रस्तुति का आनंद लें।

गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः। गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाले परम प्रकाश हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है, आत्मा में ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु की कृपा से ही जीवन धन्य होता है।

यह शरीर नश्वर और असार चादर है। अतः हमें मोह छोड़कर मन और इंद्रियों को साधकर सद्गुरु के ज्ञान एवं सत्संग से जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और विषयाक्ति से यह शरीर रूपी चादर मलिन हो जाती है। इसलिए संयम आवश्यक है, क्योंकि यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। आइए सुने संत कबीर जी की ये रचना।

संसार के सभी सहारे एक दिन छूट सकते हैं, पर प्रभु का साथ कभी नहीं छूटता। जब हृदय में ईश्वर का वास हो तो भक्त और कहां जाए। उसकी हर सांस, हर प्रार्थना और हर आशा अपने प्रभु के चरणों में ही समर्पित होती है। इसी दिव्य भाव को साकार करती इस भक्तिमय प्रस्तुति का आनंद लें।

0: ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख है किशोर कुमार श्रीवास का और वाचन मुकाम सिंह चौहान का।
1: स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, आगामी 25 वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही आराध्य देव होना चाहिए और वह है हमारी मातृभूमि भारत। चिंतन की आज की कड़ी में हम विचार करेंगे कि राष्ट्र धर्म की शिक्षा वास्तव में क्या है। क्या यह केवल किताबी ज्ञान है या हमारे आचरण की वह सुगंध है जो समाज को महकाती है। राष्ट्र धर्म का अर्थ केवल सीमा पर खड़े होकर लड़ना ही नहीं है, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाना भी राष्ट्र धर्म है। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को याद किया जाए। यह तो उस सांस की तरह है जो हमारे भीतर हर पल चलती है। कभी एकांत में बैठकर सोचिएगा कि इस देश की मिट्टी ने हमें क्या नहीं दिया। वह अनाज जिससे हमारा शरीर बना, वह जल जिससे हमारी प्यास बुझी और वह हवा जिसने हमें जीवन दिया। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां याद आती हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, एक पुष्प भी अपना राष्ट्र धर्म जानता है कि उसे वीरों के पथ पर ही अर्पित होना है। क्या हम जो हार्ड मांस के चेतन मनुष्य हैं अपना धर्म भूल गए हैं? राष्ट्र धर्म का अर्थ केवल सीमा पर गोली खाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील होना भी है। अक्सर हम शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियां हासिल करना समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षा वह है जो हमें स्व से उठकर सर्व के बारे में सोचना सिखाए। राष्ट्र धर्म की शिक्षा हमें यह बोध कराती है कि हम इस मिट्टी के कर्जदार हैं। इंदौर की धरती जहां न्याय की प्रतिमूर्ति देवी अहिल्याबाई ने शासन किया, हमें सिखाती है कि जब शासन और शिक्षा में लोक कल्याण का भाव जुड़ जाता है तभी राष्ट्र धर्म जागृत होता है। एक विद्यार्थी का पूरी निष्ठा से पढ़ना, एक सफाईकर्मी का शहर को स्वच्छ रखना और एक व्यापारी का ईमानदारी से टैक्स भरना, ये सभी

0: राष्ट्रधर्म के छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण रूप हैं। राष्ट्रधर्म की शिक्षा हमें सिखाती है कि राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्र वहां रहने वाले करोड़ों लोगों की धड़कन है। जब हम किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने से बचाते हैं या सड़क पर किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम अपनी उस शिक्षा को ही जी रहे होते हैं जो हमें हमारे राष्ट्र ने दी है। राष्ट्र प्रेम का कोई भाषण नहीं, बल्कि वह मौन संकल्प है जो हमें एक बेहतर नागरिक बनाता है। राष्ट्र धर्म की सबसे अच्छी शिक्षा है संवेदनशीलता। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है और हम छप्पन भोग खा रहे हैं, तो यकीन मानिए हम राष्ट्र धर्म नहीं हो सकते। अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। क्या हम उस राष्ट्र पुरुष के सम्मान को अपनी छोटी छोटी गलतियों से ठेस पहुंचाएंगे? तो आज चिंतन में खुद से एक वादा करें, हम जहां भी हैं, जिस भी पद पर हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, वही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। याद रखिए, देश हमसे है और हम देश से हैं। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें। जब हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो राष्ट्र मुस्कुराएगा।
1: ये था चिंतन। आलेख था किशोर कुमार श्रीवास का और वाचन मुकाम सिंह चौहान का। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और बचाव के उपाय। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर विक्रम बलवानी से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम इंदौर के विविध भारतीय चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं, और इसी के साथ आप इसे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना न भूलिएगा आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज जानकारी दी जा रही है कि खरीफ मूंगफली का लाभ कैसे लें। वाचन है भारती उपाध्याय का।
2: किसान भयोन के राम राम। किसान भयोन, आज खेती की बात में बात करांगा कि मूंगफली की खेती कैसे करा। मूंगफली की बुवाई खरीफ रबी और जायद तीनों मौसम में ली सका हाँ, जिसमें खरीफ फसल सबसे ज्यादा अपना के उत्पादन देवे है। एका सारू अपना किसान भयोन खरीफ माए एक ही फसल ज्यादा लगावे है। मूंगफली सारू भूरभूरी बलुई दोमट मट्टी उपयुक्त मानी जावे है। साथे साथ भयोन इना मूंगफली की बुवाई माए सिंचाई निंदाई गुड़ाई और खरपतवार को अपना किसान भयोन के खास ध्यान रखना पड़े है। मूंगफली भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इखे अपन ग्राउंड नट या पीनट का नाम से भी जाना हाँ, या तेल चटनी नमकीन मक्खन और अपना ढो ढंकर का चारा सारू भी इस्तेमाल होवे है। मूंगफली की खेती से किसान भयोन अपनो जो है नी अच्छो मुनाफो ली सके है, क्योंकि इकी मांग जो होवे नी वह साल भर तक रेवे है। मूंगफली की जो फसल है वह कम पानी और कम देखभाल में भी अच्छी पैदावार दी देवे है। तो एका सारू अपना किसान भयोन एकी फसल लेने अच्छो खासो मुनाफो कमाई सके है, अच्छो उत्पादन भी ली सके है। भारत में मूंगफली की खेती तो वैसे तीनों मौसम में करे है, पर सबसे ज्यादा उत्पादन खरीफ मतलब बरसात वाली सीजन में ही मिले है। तो अपना जो किसान भयोन है वह खरीफ बरसात वाली फसल लगावे तो एक ही बुवाई को जो बखत रेवे है नी सही बखत वो 15 जून से 15 जुलाई का बीच में रेवे है। पर जब मानसून की शुरुआत हो जावे है तब भी अपना किसान भयोन एक है लगाई सके है। मूंगफली सारू उपयुक्त तो मट्टी जो होवे नी भयोन वा होवे है भूरभूरी बलऊ दोमट या दोमट मट्टी इका सारू सबसे

0: कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। और गुच्छा वाली अगर अपन किस्म अपन ने लगाई है तो 30 सेंटीमीटर, और फैलने वाली किस्म अगर अपन ने लगाई है तो 45 सेंटीमीटर की दूरी एमए होनी चाहिए। जबकि पौध की जो दूरी है वह पौधा से पौधा की दूरी वह 10 से 15 सेंटीमीटर। और अगर अपन की गहराई के बारे में जाना तो इसकी गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। साथ ही साथ मिट्टी की नमी के अनुसार भी अपन की गहराई ली सका। हाँ, और खाद और उर्वरक की बात करा तो अपना जो किसान भाइयों ने वो माटी परीक्षण तो करे ही सही, तो माटी परीक्षण के अनुसार जो भी कमी होवे है ओके पूरे करते हुए खाद और उर्वरक को वे उपयोग कर ही सके है। एक खास बात तो यह है कि मूंगफली जो है दलहनी फसल है, एका सार उसमें नाइट्रोजन कम लागे है। सिंचाई निराई गुड़ाई और देखभाल सारू अपना किसान भाइयों कई कर सके है कि बुवाई का बाद पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए, फिर दूसरी सिंचाई जो है वह फूल आने का 40 से 45 दिन बाद, और फिर खूंटी बने जब अपना पौधाना की खूंटी बनने लगे तो 55 से 70 दिन बाद, और फली भरने की बखत में अपना भाइयों के चाहिए कि वे जरूरी में एक ही सिंचाई करी लेवे, ज़्यादा पानी नहीं देवे, क्योंकि ज़्यादा पानी से कहीं होवे कि अपना जो फसल है वह गलने को डर रहे है। खरपतवार नियंत्रण को खास करीने ध्यान रखे कि अपना जो खेत है उसमें खरपतवार नहीं होने पाए। साथ ही साथ जब एक ही पत्ती पीली पड़ने लगे और जो कि फलियां है वह कठोर होने लगे तब एक ही कटाई करी लेनी चाहिए। तो आज अपना किसान भाइयों से इतना ही कहना था। किसान भाइयों, राम राम।
1: ये थी खेती की बातें। इसमें आज आपने जानकारी प्राप्त की कि खरीफ मूंगफली का लाभ कैसे लें। वाचन था भारती उपाध्याय का। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

ये था श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब पेश है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज सुबह 7:20 पर होगा संस्कृत में कार्यक्रम दिव्य धारा। इसमें आज आप सुन सकेंगे डॉक्टर वंदना प्रजापति की वार्ता, विकसित भारतस्य निर्माणे संस्कृतस्य योगदान। सुबह 7:35 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुबह 8:30 बजे भोपाल से रिले किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। रेखा सोलंकी के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर। लता मंगेशकर के स्वर में सुगम संगीत प्रसारित करेंगे सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे अब्दुल हमीद का वायलिन वादन। सुबह 10:05 पर और रात 9:30 बजे पेश किया जाएगा श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 बजे होगा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: दिन में 12:30 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। एक बजकर 30 मिनट पर होगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 12 बजे, 2 बजे और फिर 2:30 पर। स्टूडियो से 1 बजे रिले किया जाएगा महिला कार्यक्रम। इसमें योजना क्रम में आज बताएंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में और साथ ही सुनिएगा शैव्या व्यास की कहानी दो दीपक। शाम की सभा शुरू होगी युवाणी कार्यक्रम से 5 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित करेंगे शाम 6 बजे। 8 बजे दिल्ली से रिले करेंगे संसद समीक्षा। 8:30 बजे भोपाल से रिले की जाएगी विधानसभा समीक्षा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे सुनिएगा पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग रागेश्री। और हमेशा की तरह 7:20 पर होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। फिल्म संगीत 8:35 पर और 9:15 पर। यह था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में पहले संस्कृत में फिर हिंदी में समाचार रिले करेंगे दिल्ली से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमंत्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत लक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्राम विकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्ध क्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन्नुपवेशने मन्त्रिमण्डल सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे सार्थक चर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थक चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीय दिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति अथ अस्मिन् विषये गंभीर विमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयम् दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
3: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानो

उस्का दाकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थीं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में भोपाल से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में होंगे शामिल। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री एली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर समस्या है जिस पर गहन और गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
1: लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी।
0: प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल समय से 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में कुल 3 दिनों में 23 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान पूरक बजट पेश किए जाने के साथ ही 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक 1 में स्कूली बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने आए आगरमालवा जिले के विभिन्न अंचलों के 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ जबलपुर के 40 विद्यार्थियों ने भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विद्यार्थी

0: देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को समझना, उसके मूल्यों को आत्मसात करना और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना ही जागरूक नागरिक की पहचान है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व के रूप में 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में गुरुजनों का स्वागत सम्मान, व्याख्यान, उद्बोधन और छात्र शिक्षक संवाद जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद भवन में आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि राज्य में खेलो बढ़ो अभियान के अंतर्गत सांसद कप और विधायक कप के माध्यम से प्रदेश के हर विधानसभा और तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर छतरपुर की क्रांति गोड को सम्मान स्वरूप 5,00,000 रूपये देने की भी घोषणा की। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती के अवसर पर आज अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इस मौके पर डॉ. यादव विभिन्न विभागों के लगभग 287 करोड़ रूपये से अधिक लागत के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन करेंगे। साथ ही वे लगभग 53 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न निर्माण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे अपने पूर्ववर्ती अधिकारी की तरह ही उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ ये पद संभालेंगे। वहीं मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। और अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में बारिश दर्ज की गई। कल सबसे ज्यादा बारिश नर्मदापुरम जिले में हुई। मौसम विभाग ने आज खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और धार जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में भारत सहित 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। झाबुआ में बाल विवाह की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने का भी आह्वान किया। मंदसौर में ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सीतामऊ और सुवासरा में बैठक लेकर सभी घरों तक डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कल आगरमालवा जिले के पर्यटन ग्राम भानपुरा पहुंचकर होम स्टे की साफ सफाई, सुरक्षा, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप साज सज्जा और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। इंदौर जिले की खुड़ैल तहसील अंतर्गत ग्राम असरावद बुजुर्ग में राजस्व शिविर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिंगरौली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बरगवा और कन्या शिक्षा परिसर बरगवा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में कर्तव्य फाउंडेशन रतलाम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10। अभी आगे दीजिए। नमस्कार।

सहस्रम समुद्रतम ध्यात यान्तु च जन्म विकारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयम तु कृतिनिधारा वयम तु कृतिनिधारा। जयतु संस्कृतम, जयतु विकसित भारतम।

अभी आपने सुना संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा, जिसमें आज प्रसारित की गई डॉक्टर वंदना प्रजापति की वार्ता विकसित भारतस्य निर्माणे संस्कृतस्य योगदानम्। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे शहर से कुछ दिन बादल रूठे रहे और एक बार फिर सावन का महीना आने के पहले रिमझिम फुहारें, भीगा भीगा मौसम वापस आ गया है। लीजिए इसी मौसम का आनंद लेते हुए, जिसका हमें बड़ा इंतजार था, कुछ फीके फीके से गीत सुनते हैं। शुरुआत कर रहे हैं काला बाजार फिल्म के गीत से, जिसे गाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। शैलेंद्र के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, जहाँ पानी की बूंदें तन को भिगोती हैं, वहीं ये सुरीले सदाबहार नगमे मन को भिगो देते हैं। लीजिए अब सुनिए चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी। इसे लिखा है गुलजार दीनवी ने और संगीत है दत्ताराम का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए आशा भोसले की आवाज में अनुपमा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अंजना लीजिए, सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में।

और लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म है रूप तेरा मस्ताना, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रूप तेरा मस्ताना। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए आरती को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी देर में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार प्रभात।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
6: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
5: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप

0: करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: डीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए।
2: यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
8: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern and not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
9: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं. What are the factors which are leading to paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है?
7: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jor Bagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. Minister of State in the Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that government is aiming to bring at least 5 indigenous small modular nuclear reactors into operation by 2033. We have a report.
10: In a written reply in Lok Sabha, the minister said Parliament has enacted the Shanti Act 2025, which opens the nuclear energy sector to private participation. Dr. Singh said Bhabha Atomic Research Center is developing a 220-megawatt Bharat Small Modular Reactor, a 55-megawatt reactor and a high-temperature gas-cooled reactor designed to produce hydrogen. Government has drawn up a roadmap for reaching the 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047, as announced in the Nuclear Energy Mission. The minister stated that as per the roadmap, the present nuclear power capacity of 8.78 gigawatts is expected to reach about 22 gigawatts by 2031-32 on progressive completion of projects presently at various stages of implementation. Komadi Parekh, Akashvani News, Delhi.
7: The centre has approved 2 electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. We have details from our correspondent.
11: The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav in a written reply in the Lok Sabha yesterday. The government said India's electronic manufacturing sector has witnessed significant growth over the past decade, supported by reforms such as protection-linked incentive schemes, liberalized FDI norms, tax reforms and labor reforms. Electronics production has increased from nearly 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to around 13.11 lakh crore rupees in 2025-26, while exports have risen from about 38,000 crore rupees to 4.24 lakh crore rupees during the same period. Mobile phone production has also grown more than 30-fold to 6.27 lakh crore rupees, with exports touching 2.59 lakh crore rupees. India now manufactures nearly 99.2% of the mobile phones sold domestically, and the sector provides employment to nearly 25 lakh people, according to industry estimates. Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
7: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Romania beginning today. During her visit, President Murmu will meet Romanian President Nicăsăr Dan, Interim Prime Minister Ilie Bolvan, President of the Senate Mircea Abrudin and President of the Chamber of Deputies Sorin Grindeanu. She is also scheduled to meet the members of the Romanian-India Parliamentary Friendship Group. President Murmu is currently on an historic state visit to North Macedonia, one destination that stands out not only for its breathtaking beauty, but also for its rich history and global significance, Lake Ohrid. Let's hear more about this unique destination from our correspondent Subhashree Mahapatra, covering the President's visit.
12: Lake over it is one of the Europe's oldest and deepest lakes. It lies on the border between North Macedonia and Albania and is famous for its exceptionally clean water, rich biodiversity and cultural heritage. More than 200 plant and animal species are found only in this lake, making it a globally important ecological site. The lake is also a UNESCO World Heritage Site. Lake Ohrid is often considered one of the Balkans' most beautiful destinations because it combines spectacular scenery, ancient history, and unique wildlife in one place.
7: Earlier, President of North Macedonia, Gordana Silvanovska Davkova, said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani News in Skopje, Ms. Davkova said she was earlier impressed by India's long history and also spirituality.
1: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
7: National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. The day commemorates nearly a century of broadcasting's contribution to informing, educating, entertaining and uniting the nation. Details on this from our correspondent.
3: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Arzu, Akashvani News, Delhi.
7: A voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protests today with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leaders slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. On to sports. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Indian contingent comprises 125 members, including para-athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
13: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes a statesman. The Financial Express informs, cross-holding cap set to ease. Airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill. India's side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express on its editorial page under the caption, Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
7: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
15: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है सीतांशु दत्त रॉय। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से महेंद्रनाथ महर्षि और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
16: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
17: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
16: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
17: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
16: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

स्वरों की यात्रा निस्सीम होती है। स्वर न भाषा के दायरों में सिमट पाते हैं और न ही सरहदें उन्हें बांध पाती हैं। लेकिन जब कोई साधक अपने सुरों में मातृभूमि का प्रेम, अपनी संस्कृति की गरिमा और अपनी आत्मा की तपस्या को एक साथ पिरो देता है, तब संगीत मात्र मनोरंजन का साधन नहीं रहता, वो वतन का राग बन जाता है। आज की प्रस्तुति में एक ऐसी विलक्षण स्वर साधिका का स्मरण, जिनकी आवाज में कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय ऊंचाइयां थी और देशभक्ति की प्रखर चेतना थी, जिन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी एक राह बनाई और अपने स्वरों से ये सिद्ध किया कि सच्चा संगीत मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को अपने वतन से जोड़ता है। वतन का राग कार्यक्रम में आज बात कर्नाटक संगीत विभूति पद्म विभूषण डी के पट्टम्माल की।

डीके पट्टम्माल यानी दामल कृष्ण स्वामी पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक हैं। उन्हें एमएस सुब्बुलक्ष्मी और एमएल वसंत कुमारी के साथ कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति में स्थान प्राप्त है। उनका जीवन संगीत, साहस और परंपरा को एक नई दिशा देने वाली प्रेरक कहानी है। डीके पट्टम्माल का जन्म 19 मार्च 1919 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उनके पिता दामल कृष्णस्वामी दीक्षितार स्वयं संगीत के गहरे जानकार थे। उनकी माताजी का नाम राजम्माल था। उनकी माताजी भी अत्यंत सुरीली गायिका थीं। लेकिन ये वो समय था जहां महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा बहुत गहरी खींची हुई थी। उन्हें घर की चार दीवारी के बाहर, यहां तक कि रिश्तेदारों के सामने भी गुनगुनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी के भीतर छिपी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था। वो अपने पिता की उंगली थामे संगीत सभाओं में जाती और वहां जो कुछ भी वो सुनती वो उनके बाल मन पर अंकित हो जाता। घर लौटकर वो अपनी तुतली जुबान में उन कठिन बंदिशों को हूबहू गाया करती। इस छुप छुप कर चलने वाली स्वर साधना में उनके भाई डीके रंगनाथन, डीके नागराजन और डीके जयरामन उनके सहयात्री बने। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में मद्रास में अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी। प्रतिष्ठित रसिका रंजनी सभा में उनके स्वर गूंजे तो श्रोता मंत्रमुग्ध थे। लेकिन उस दौर में एक लड़की का सार्वजनिक मंच पर तंबूरा लेकर बैठना एक सामाजिक भूचाल से कम नहीं था। समाज ने उंगलियां उठाई, रूढ़िवादियों ने आंखें दरेरी, लेकिन स्वर की एक मधुर यात्रा आरंभ हो चुकी थी। मद्रास कॉरपोरेशन रेडियो की तरंगों पर भी उनकी आवाज गूंजी और समय ने देखा कि कर्नाटक संगीत का इतिहास बदल रहा है।

कर्नाटक संगीत जगत में डीके पट्टम्माल की आमद से संगीत जगत के बड़े बड़े दिग्गजों को ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक संगीत का इतिहास अब दो भागों में बढ़ चुका है, डीके पट्टम्माल के आने से पहले का इतिहास और उनके आने के बाद का इतिहास। इसी स्वर्ण काल में उनका परिचय महान संगीतकार और गायक पापनाशम शिवन से हुआ, जिन्होंने इस पवित्र नदी जैसी गायिका को अपने तमिल कृतियों का अमूल्य खजाना सौंप दिया। कर्नाटक संगीत के मंच पर जब पूरी तरह पुरुषों का प्रभुत्व था, तब पहली बार डीके पट्टम्माल ने मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करते हुए इस परंपरा को बदलने का साहस दिखाया। उन्होंने न केवल सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुति दी, बल्कि रागम तानम पल्लवी जैसी अत्यंत कठिन और उस समय तक केवल पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली इस शैली में भी प्रस्तुति दी। उस समय तक पुरुष कलाकार ये मानते थे कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं है। रागम तानम पल्लवी कर्नाटक संगीत की वो विधा है जहाँ गणित की सटीकता, फेफड़ों की असीम शक्ति और कलाकार की कल्पनाशीलता की परीक्षा होती है। उस समय के पुरुष कलाकार ये मानते थे कि महिलाएं केवल सरल भक्ति रस से पूर्ण कीर्तन गा सकती हैं, लेकिन वो इस बौद्धिक चक्रव्यूह को नहीं भेद सकती। डीके पट्टम्माल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने न केवल रागम तानम पल्लवी को गाया, बल्कि संगीत के इतिहास की सबसे जटिल और लंबी ताल सिंहनंदन ताल, जिसमें 128 अक्षर यानी 128 मात्राएं होती हैं, तथा

सन 1939 में डीके पट्टम्माल का विवाह आर ईश्वरन के साथ संपन्न हुआ, जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना और उनकी संगीत यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण साथी बने। डीके पट्टम्माल ने देश की स्थिति को देखते हुए अपने स्वर को राष्ट्र आराधना का माध्यम बना दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी तमिल फिल्म त्यागभूमि में पहली बार पार्श्व गायन किया। इस फिल्म में उन्होंने सुप्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती के क्रांतिकारी गीतों को अपनी आवाज दी। ब्रिटिश सरकार बौखला गई और फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर सन 1947 में भारत आजाद हुआ। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। तब ऑल इंडिया रेडियो मद्रास के स्टूडियो में डीके पट्टम्माल तंबूरा लेकर खड़ी थीं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, देश में रोमांच फैल गया। भारत आजाद हुआ और डीके पट्टम्माल ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का अमर स्वतंत्रता गीत गाया, आडवो में पल्ली पाडवो में आनंद सुतंत्रम, जिसका अर्थ था आओ हम सब मिलकर नाचें, आओ हम सब मिलकर गाएं कि हमें वो पावन स्वाधीनता मिल गई है।

उनकी आवाज में देश की आजादी का वो पहला जश्न तैर रहा था। इस गीत ने डीके पट्टम्माल को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र की साझी चेतना का हिस्सा बना दिया। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के अनेक गीतों को उन्होंने अपना स्वर दिया, जो आज संगीत जगत की अमूल्य धरोहर हैं। डीके पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक मुथुस्वामी दीक्षितर की कृतियों की सबसे प्रामाणिक संवाहक बनी। दीक्षितर की कृतियां अपनी विशेष गति, दार्शनिक संस्कृत और बेहद सूक्ष्म गमकों के लिए जानी जाती हैं। डीके पट्टम्माल ने इन कृतियों के मूल स्वरूप को इस तरह से सहेजा जैसे किसी धरोहर को सहेजा जाता है।

डीके पट्टम्माल को तमिल फिल्मों में गीत गाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने केवल भक्ति और देशभक्ति से जुड़े गीत गाना ही स्वीकार किया। फिल्म त्यागभूमि के बाद उन्होंने फिल्म इरुवर, रामराज्यम, वेधाल उलगम सहित कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। डीके पट्टम्माल केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो एक महान संगीत गुरु भी थी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने स्वयं कर्नाटक संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। पिता के साथ संगीत सभाओं में गुणीजनों को सुन सुन कर ही उन्होंने संगीत सीखा था, लेकिन स्वयं उन्होंने अनेक कलाकारों को प्रशिक्षित किया। उनके छोटे भाई डीके जयरामन ने उनके मार्गदर्शन में संगीत शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर संगीत कलानिधि सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पुत्रवधु ललिता शिवकुमार को भी संगीत सिखाया, जो अक्सर मंच पर उनके साथ संगत करती थीं। और उनकी पौत्री और शिष्या नित्याश्री महादेवन आज कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। डीके पट्टम्माल को संगीत कलानिधि, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही उन्हें गान सरस्वती की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 16 जुलाई सन 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण संगीत विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और बचाव के उपाय। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर विक्रम बलवानी से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224।

0: वो नंबर फिर सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलिएगा आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। सूचना समाप्त हुई। सुबह के 9 को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लोक संगीत के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं रेखा सोलंकी और साथियों के गाए कुछ मालवी लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी इंदौर पर इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत और हम आपको सुनवा रहे हैं रेखा सोलंकी की गाए मालवी लोकगीत।

0: लोक संगीत के तहत अभी आपने सुने रेखा सोलंकी के गाए कुछ मालवी लोकगीत। आकाशवाणी इंदौर से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के गाए कुछ भजन।

आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए एक और भजन लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना सुगम संगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अब्दुल हमीद का वायलिन पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर संगत है मुकेश राजगया की।

0: शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आपने सुना अब्दुल हमीद का वॉयलिन पर बजाया राग नटभैरव, तबले पर संगत थी मुकेश राजगया की। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, सुबह के 10 बजने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार भोपाल से, माफ कीजिए, अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: जिले की चिट्ठी, आलेख दीपक शर्मा, वाचन सर प्रशांत सिंह। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक मंदसौर जिले में विकास, स्वास्थ्य, जनकल्याण, कृषि, रोजगार, पर्यावरण और जनजागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां लगातार चर्चा में रहे। वहीं जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर इस वर्ष स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम के साथ नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद सुधीर गुप्ता की मौजूदगी में हजारों लोगों ने इस दौरान सामूहिक योग अभ्यास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। जबकि जैन संत प्रणमय सागर ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों को योग अभ्यास कराया। मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग पिछले पूरे महीने सक्रिय नजर आया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत यहां 84 शिक्षकों को 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देकर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में तैयार किया गया। वहीं राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिले के लगभग 1.5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 1212 बूथ बनाए गए। अभियान से पहले जन जागरूकता रैली निकाली गई और बाद में जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर अभियान का प्रारंभ किया। इसके साथ ही दस्तक अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों को विटामिन ए का घोल भी पिलाया गया तथा 31 अगस्त तक घर घर जाकर 1.5 लाख से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जाँच का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था भी इस दौरान सुनिश्चित की गई। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा डायरिया की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान इन दिनों चलाया। मंदसौर और नीमच के संयुक्त प्रशिक्षण में स्वास्थ्य अमले को वाहक जनित रोगों की रोकथाम का भी प्रशिक्षण दिया गया। जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी महत्वपूर्ण पहल की गई। स्थानीय सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को विद्यार्थियों में मानसिक समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता और आत्महत्या रोकथाम के विषय में प्रशिक्षित किया गया। जिले में विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण जागरूकता रैली निकाली गई, जबकि एड्स नियंत्रण समिति की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी जांच पर भी विशेष जोर दिया गया। मंदसौर जिले में ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में भी कई नई पहल देखने को मिली है। स्व सहायता समूह से जुड़े उद्यमियों के लिए विशेष उद्यम पंजीयन अभियान चलाया गया, जिसमें उद्यम पंजीयन के दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी भी दी गई। इसी दौरान विकसित भारत जी राम जी योजना का भी जिले में शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का दौरा भी मंदसौर में पूरे महीने चर्चा में रहा। उन्होंने पिपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में 1.77 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 32 कैश काउंटर दुकानों का लोकार्पण किया, जिससे किसानों को भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है। गुड़बेली छोटी में 8.57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन भी किया गया। वहीं गुर्जर बर्डिया में करीब 333 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रीय विकास को गति देने का संदेश दिया गया। पिछले दिनों उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह का शामगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने यहां अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मॉडल पंचायत भवन, सांदीपनी विद्यालय और ग्रामीण मार्गों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पंचायत व्यवस्था और जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। मंदसौर जिले के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तब उठा जब मंदसौर विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर का नियोजित विकास, नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं, आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। जिले में शिक्षा और युवा गतिविधियों में भी पूरे महीने उत्साह बना रहा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में दीक्षारंभ एवं प्रवेश उत्सव तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित हुई। मंदिर में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत सज्जा, पालकी यात्रा, शयन आरती, यात्री सुविधाओं और सौर ऊर्जा पैनल लगाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख था दीपक शर्मा का और वाचन स्वर प्रशांत सिंह।

0: का। यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: लीजिए, प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है और स्वीकार कीजिए आरती जादुन का नमस्कार। श्रोताओं, आपकी फरमाइश के गीत सुनवाने के लिए हम तैयार हैं, वो फरमाइशें जो आपने लिख भेजी हैं खतों में। आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं नया दौर फिल्म के एक गीत के साथ। इसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत है और जिन श्रोताओं ने इस गीत के लिए फरमाइश भेजी हैं उनके नाम हैं जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार, वंदना धुले, अर्पिता, यशोदा और समस्त सिंगणकर परिवार। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव। छाबड़ा राजस्थान से, माफ कीजिए, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, हेमराज महोबिया। खंडवा से ही वीएस महोबिया और कमला महोबिया। ग्राम मोहत बुरहानपुर से रीना, सनी, रोजूबाई, परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर। भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान, यूनुस तड़वी। बुरहानपुर से मुशर्रफ खां, जरीना मुबारक, परवेज, रोजमीन और तैमूर तड़वी। सनावद मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्णव और कामवंशी कटारिया। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं नया दौर फिल्म का एक गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है 20 साल बाद। शकील बदायनी के बोल हैं, संगीत है हेमंत कुमार का। इस गीत को सुनना चाहते हैं दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, श्रीवर ने रकोला से अरुणा दामोदर, ग्राम अडावद जलगांव से नरेंद्र मसदकर, निशा चीनू, निधु मसदकर, राजपुर से जिला बड़वानी से संतोष यादव, शिवराम दुर्गा, निखिल, अंकित, नंदिनी, किरण, रेखा, सोनू और कमलेश यादव, बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा और ज्योति वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान, सोहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा, कृष्णा नगर टावर नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमा, सीमा, रीमा, दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे, रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा देवी वर्मा, दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू।

तीसरी मंजिल। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के गीत को सुरों में ढाला है आरडी बर्मन ने, और इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं छत्रपति शाहू नगर हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले, अशोकनगर बसमत हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू, खंडवा से अनिल विंचूरकर, मंगला, शोभित, उदयनगर से मोहित रत्नपाखी, स्वाति और मनस्वी रत्नपारखी, मुर्तिजापुर से हारून शाह और शाजिया बानो, शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, सोनाली, जयश्री जोशी, दीपाली, माधुरी जोशी और जीवा देशमुख, पिंपरी वाशिम से गबा सिंह राठौर, सतीश, अभय, अजय, यश, खुशन राठौर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मीका बिरक, रटलाई झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, काजल, मीनाक्षी, लकी, सत्यनारायण, मनोहरबाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। लीजिए अब सुनिए हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, बोल हैं साहिल लुधियानवी के और संगीत है रवि का। इस गीत को सुनना चाहते हैं करनाल से मीनाक्षी तिवारी, सुधीर नूतन, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज मीना योगेश और सौरव शर्मा, बालोदा लक्खा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति, कैलाश कुंदन, साक्षी मीनाक्षी, दिव्यांशु और भगवंताबाई प्रजापति, संस्कृति नगर इंदौर से हर्ष केशरी, मिताक्षी बबलू, छाया और सोमतीबाई केशरी, सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मेला से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी का गीत है, संगीत है आर डी बर्मन का। गीत सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं चांदूर बिस्वा से, नारायण खड़ से, ललिता, स्वाति, परी, संजना, गणेश और कार्तिक खड़ से, ऊर्धापुर जांभरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी जोशी, परभणी हुन से गणेश हरगांवकर, इंदौर से महेश रायकवार, अग्रता, सरिता, कृष्णवी, अहिल्याबाई रायकवार, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकिब और छोटू पवार, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, रोशनी, अजय और कृष्णा देवी गंगराड़े, सिंघारतलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा भारती, शालिनी और कामेश यादव, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। चलो
2: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
3: मन भवन कार्यक्रम में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत, किशोर कुमार और उषा खन्ना के स्वरों में। इंदिवर के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मिठाई, राकेश, उमेश सहजवानी, अमिता जिम्मी, हनी दियाना, जियांश मिठाई, सारणी जिला बैतूल से अमित खातकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाग, पंजाब राव निम्बालकर, संदीप पाटिल, पुणे से प्रियंका, पंकज आर्या, जरूर वरूर से बाबा साहेब वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, वारणा शाहपुर से विजय चव्हाण, तेजस्वी, अंकिता, अनिकेत चव्हाण, चंदननगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रीमीण वाघमारे, ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक, नागपुर से शैलेश गवांडकर, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि गवांडकर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवांडकर।

इस गीत को सुनना चाहते हैं सरवानिया महाराज, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से, गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी, हंसवी पाटीदार, कैदी मुड़ा रायगढ़ से, पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, नीलू, ऋतु और ऋषभ सिंह, राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो, दस्तगीर, फैजन बी, शाकिर, इस्लाम बी, बाबा शेख, करिश्मा, सिमर, सानिया, बिस्मिल्ला, गदर, नीलोफर शेख, जिला नांदेड़ से चांदनी अयूब, सैयद, राजे अमन और माहिरा सैयद, बेरड़ी से राजेश सोनी कंचन, गायत्री ढोमने, वैष्णवी, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज में ये थी अनपढ़ फिल्म की गजल। और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। एक बार फिर आवाज है लता मंगेशकर की, उनका साथ दिया है मन्ना डे ने और फिल्म का नाम है रात और दिन। शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं अनंत चिखले, मयंक अवधूत, दिनेश व्यास, ओम प्रकाश, दिनेश मालवीय, अनिल, विनोद परिहार और मोहन। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन। इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गौड़। आलिका डबवाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदनी। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। भीकन गांव से संतोष सातले, चंदन, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र, कंचनबाई सातले।

पाकिजा फिल्म के इस गीत को कुछ और श्रोता सुनना चाहते थे, जिनके नाम हम आपको बता दें। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री, धनजय, मानपुर खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा, नीतू वैद, ग्राम रंगवासा बेटमा से छतर सिंह तंवर, हुकुम सिंह, सोहन सिंह, मोहन सिंह, मदन सिंह, युवराज सिंह, राहुल सिंह, शिवराज सिंह, आयुष देवड़ा, देवेंद्र सिंह सोलंकी, शिवांश चौहान, इंदौर से अनिल कवचाले, नीना राव, नेहा फंड से सबीहा, फलक, पूजा नेनावा, सुषमा, स्मिता, पाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा, सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, रुखसार बानो, मोहम्मद आरिश। श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो इजाजत दीजिए आरती को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता। आप सब कैसे हैं मित्रों? जब हमारी आपसे बातें होती है ना, तब हम आपकी कुशलता जानना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है आपकी भी इच्छा यही रहती होगी। यही हमारे व्यवहार की मुख्य बातें होती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार से हमें अपनापन, संस्कार, इंसानियत जब नजर आती है, तो हम उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा व्यवहार हम भी चाहते हैं कि सभी हमारे लिए ऐसा ही करें। पर क्या हमने अपने व्यवहार पर गौर किया है? हमारे व्यवहार में ये सारी चीजें हैं, इंसानियत, मदद, अच्छे संस्कार। और हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, क्या हम स्वयं वैसा व्यवहार दूसरों को देते हैं? इसी बात पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारे फोन नंबर 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता हमें एसटीडी कोड लगाएं 0755, और इस विषय पर हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी नमस्कार। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार
2: नमस्कार
1: हेलो
2: नमस्कार मैडम
1: जी, आपका हाँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे। शेख सलीम जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। आज हमने एक विषय रखा है कि जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे इंसान हमसे अच्छा व्यवहार करें, तो क्या हम अपना व्यवहार भी अच्छा रखते हैं दूसरों के लिए जैसा हम चाहते हैं?
2: मेरा अच्छा रखना चाहिए
1: जी। इससे क्या फायदे होंगे जब आप अपना व्यवहार भी अच्छा रखते हैं दूसरों से?
2: उससे फायदा ये रहेगा मैडम, कुछ प्यार बढ़ेगा, लड़ाई नहीं होगी, अच्छा वातावरण रहेगा।
1: हाँ, जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि देखो उसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है ना। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों से भी करना चाहिए?
2: करना तो चाहिए
1: जी, बिल्कुल। और बताएंगे कुछ कि मतलब इस व्यवहार से आपको मतलब जीवन में क्या फायदा मिलेगा?
2: मैडम फायदे तो बहुत है ना, एकदम ये विषय पहले दिमाग में रहता तो बता देता। फायदे तो बहुत है, अच्छे व्यवहार से वातावरण अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है। किससे बात करो तो वो तारीफ अलग करते हैं कि भाई ये अच्छे लोग है। अब तुम खराब बात करोगे तो कहेंगे ना यार वो बहुत खराब लोग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या है, हम अपने संस्कारों का परिचय भी देते हैं, है ना जी। तो आपसे हमारी बात हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: आप श्रीपाद जाखड़े बोल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से।
0: हाँ जी, आपका एक बार फिर से नाम बताएं।
1: श्रीपाद जाखड़े
0: जी।
1: श्रीपाद
0: जी, जी जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी।
0: आज का कार्यक्रम जिसमें आपका फोन लगा है वो है बात आपकी गीत हमारे, है ना। और आज हमने एक विषय रखा है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार चाहते हैं ना, कि दूसरे हमसे अच्छा बर्ताव करें, पर क्या हम स्वयं भी सभी लोगों के लिए वैसा ही अच्छा व्यवहार करते हैं? जैसे हाँ जी, हाँ, जैसे हमारी उम्मीद रहती है ना कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार रखे, पर क्या आप अपना भी व्यवहार अच्छा उसको देते हैं?
1: अपने ऊपर भी निर्भर करता है, कारण अपन समझो किसी से अच्छा व्यवहार रखते हैं तो वो सामने वाला अपने आप ही अच्छा व्यवहार करेगा, अपने को रिस्पेक्ट देगा। नहीं तो फिर अपन ही समझो रख व्यवहार करेंगे तो फिर वो कोई सामने वाले भी ऐसे ही सलूक करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब हम अपने अच्छे व्यवहार का परिचय देंगे सामने वाले को, है ना, तो सामने वाला भी खुश होगा और आपकी बातचीत बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात यह है कि व्यवहार में हमारा संस्कार झलकता है। प्रति व्यक्ति का जो संस्कार है, जो उसके अच्छे गुण है, वो जाते हैं जी।
1: एक बात और भी होती
0: है जी,
1: एक बात और भी कहना चाहता हूँ।
0: हाँ?
1: लोग क्या है, ऊपर से मीठा बोलते हैं पर वो अंदर से उनमें क्या गुण है क्या है वो तो मालूम नहीं पड़ सकता।
0: जी जी जी, हाँ। तो देखिए, हाँ
1: हाँ,
0: तो वो तो एक ऐसी बात हो गई कि आपको स्पष्ट रहना चाहिए, है ना, सामने कहना चाहिए जो बातें हों, है ना। ये भी व्यवहार का एक कहना चाहिए एक मुख्य बात होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही, है ना, जो बात है उसे आप साफ साफ कहिए, है ना। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। तो देखिए, आपने फोन किया और जगह का नाम आपने बताया नहीं, कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? महाराष्ट्र?
1: हाँ, श्रीपाद जाखड़े बोल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे से बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ
1: जी। कभी बात हुई थी महीने दो महीने?
0: हाँ जी जी जी जी, है ना, बिल्कुल। और हमें आज आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद मैम, आज फोन लगा, फोन करने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी, आपका नाम बताएं।
1: जी। मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा।
0: जी सचिन जी बात कर रहे हैं सिरसा से।
1: मेरी बात की जी, आप कौन बात कर रही हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा मैम,
0: और
1: आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है।
0: जी हमारी भी, हाँ जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, जैसे व्यवहार हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बातों को सुने, समझे, है ना? तो क्या हम वैसा ही व्यवहार अपना दूसरों को देते हैं?
1: हमें उनके उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, है
0: कई
1: ना?
0: बार क्या होता है कि हम बात करते हैं और सामने वालों को मौका तक नहीं देते बात करने का, उनकी बातों को सुनते नहीं।

0: क्या ये सही है?
1: नहीं, मुझे
0: ना?
1: पहले पहले सुनना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए, है ना?
0: हाँ, और व्यवहार ऐसा भी होता है कि जैसे हमें किसी का व्यवहार अच्छा लगा, उसने देखो कितना अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया, तो क्या वैसा ही हम अपना अच्छा व्यवहार सभी को देते हैं?
1: जी, सभी को देना चाहिए।
0: इससे क्या होगा जीवन में?
1: एक अच्छा व्यक्ति बना जा सकता है और श्रेष्ठ नागरिक बना जा सकता है ना? और यदि हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो जी, नमस्कार बहन जी।
1: जी आपका नाम बताएं।
0: जी मैं सुरेश कुमार सैनिक ग्राम पोस्ट अजमेर जिला महोबा से बात कर रहा हूँ।
1: जी तो आपका जो फोन लगा है ना वो है बात आपके गीत हमारे, है ना।
0: जी जी जी।
1: और आज हम बात कर रहे हैं अपने सभी रेडियो सुनने वालों से कि क्या आप जब अपना अच्छा व्यवहार, है ना, एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा व्यवहार हमसे करे, है ना, हमारी बातों को सुने, तो क्या हम भी अपना अच्छा व्यवहार उनको देते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे अपन से सामने वाला अच्छा व्यवहार कर रहा है तो अपन को भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं कि वो अपन से अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो अपन उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ, देखिए व्यवहार तो आपका व्यक्तित्व का परिचायक है। अगर आप अच्छी बोली बोलते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं और आपके मन में अगर किसी के लिए अच्छी भावना है, इंसानियत है, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी? क्या सोचते हैं आप?
0: जी आज हा? के समय में मतलब जो मीठे बोल बोले जा सकते, सभी का दिल जीता जा सकता है बोल बोल करके, वही इंसानियत है।
1: और हमें ये भी चाहिए कि हम उनकी मदद भी करें सामने वालों को, अगर किसी की मदद की जरूरत है। हाँ, तो ये सारी चीजें हमारे अच्छे व्यवहार में हो जाती हैं। मान लीजिए आप किसी लाइन में लगे हुए हैं और कोई एक जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको जल्दी कहीं जाना है या उसको जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो आप अपनी लाइन में उनको खड़े कर दीजिए, है ना,
0: बिल्कुल आगे खड़ा कर देना।
1: हाँ, ये भी एक बहुत छोटी सी मदद हो सकती है। और आपके
0: ऐसा नहीं है कि जैसे कोई अपना खाली ओनली जान पहचान वाला है तो उसकी मदद करनी, किसी की भी करना चाहिए।
1: हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका नाम बताएं?
1: हमारा रमेश दिनकर है, सतना से।
0: रमेश दिनकर, सतना से। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम एक विषय है जिस पर आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, क्या वैसा व्यवहार हम खुद भी करते हैं दूसरों के लिए?
1: क्यों नहीं करते हैं, करते हैं,
0: है ना? बताएं, अगर आप सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, हमसे हमारे लिए मदद करे, अच्छा बोले, तो क्या आप भी उनसे बोलते हैं?
1: जी, अच्छा बोलेंगे तो हम तो स्वयं बोलेंगे अच्छा।
0: और ये हमारे मानते हैं कि हमारे संस्कार, हमारे व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी पहचान होती है।
1: देखिए, जैसा संस्कार आदमी करता वैसा मिलता भी है।
0: अगर आप अच्छा बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बातों को समझते हैं, तो ये बहुत अच्छा गुण होता है आपके व्यवहार का। और अगर आप अच्छा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, तो स्वयं भी आप चाहेंगे कि सबको हम अच्छा व्यवहार दें?
1: अच्छे से तो अच्छा ही मिलेगा जी।
0: जी बताएं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं?
1: सब अच्छे से अगर चलेंगे तो अच्छा ही व्यवहार मिलेगा।
0: आप कहीं जाते हैं बाहर, तो आप कैसा व्यवहार रखते हैं अनजान लोगों से, अपरिचितों से, जिन्हें आप जानते नहीं?
1: नहीं, सब अच्छा ही व्यवहार रखते हैं। हम लोग का तो बाहर ही काम है, विज्ञापन लिखने जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर अच्छे से व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो सामने वाला भी आपसे अच्छी तरह बात करेगा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि वो तरीके से बात ना कर रहा हो, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार और बोली से वो प्रभावित हो जाए और अच्छा बोले। क्या लगता है आपको? चलिए,
1: आप दीदी कौन बोल रही?
0: मैं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता बोल रही हूँ।
1: जी, आपसे हो चुकी है बात।
0: हाँ, लेकिन आपको ये बात तो मतलब कैसी लगी आपको ये बात कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार रखें?
1: ठीक है, लगी, बढ़िया बात है, लेकिन
0: बिल्कुल। तो काम के साथ साथ हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारी रेडियो को भी सुने। आपने फोन किया, इसके लिए आपका

0: जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी,
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं कविता सतना से। हम
0: कविता जी बोल रही हैं, आपका पूरा नाम बताएं।
1: सतना से मध्य प्रदेश, कविता
0: जी
1: कंधारी।
0: जी जी तो आज हमने एक विषय रखा है कविता जी, कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि वो अच्छा करें, हमारी बातों को सुने, तो क्या हम भी वैसा अच्छा व्यवहार सभी को देते हैं वापस?
1: देना तो चाहिए।
0: बताएं आपको क्या अनुभव हुआ इस
1: फिर
0: बारे
1: से
0: में,
1: बोलिए, फिर से बोलिए।
0: आपको क्या अनुभव हुआ इस बारे में कि आपने किसी से उम्मीद करी, वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, आपने भी दिया उसे वापस अपना अच्छा व्यवहार?
1: हाँ, हमारी तो आदत ये है, हम किसी से बुरा सोचते ही नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग चाहते हैं सामने वाला हमारी बातों को सुने, हमको समझे, हमारे लिए रहे, मदद करे, तो क्या हम स्वयं भी वैसे रहते हैं?

0: उसके लिए?
1: हाँ, हम तो ऐसे ही, हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है। हाँ
0: क्या फायदे हो सकते
1: हाँ
0: हैं इसके बताएं, अच्छे व्यवहार के?
1: अच्छे भाई, बहुत हमारी तो, हम तो जब से मैंने शादी की है, हमारे साथ तो बहुत अच्छा सबने किया है। मतलब हमारी मदद, जैसे हमारे घर का मतलब माहौल बहुत ही, और उसके हिसाब से तो हमारे साथ सबने अच्छा ही किया है।
0: बिल्कुल। और घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना, सभी के घरों में, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना अच्छा व्यवहार दें, जो हमारे संस्कार हैं उसको,
1: हाँ, भगवान में मस्त रहते हैं।
0: हाँ उसे हम दें तो, और जिस तरह से हम सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं वही हमें देगा वापस।
1: नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है।
0: लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अच्छे व्यवहार के बहुत सारे फायदे होते हैं, मानती हैं आप?
1: हाँ, वो तो भगवान सुनता है ना सब, भगवान तो देख रहा है सबको।
0: हाँ, तो हमें हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, ये नहीं कि हम खुद ही बोले जा रहे हैं और सामने वाले को मौका ही नहीं मिल रहा है।
1: अरे, हम तो ऐसे होते हैं कि सामने वाला हमारी सुनता ही नहीं है, बोलते जाते हैं।
0: नहीं, आप बहुत अच्छी हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अपने इस पर कायम रखें, अपने अच्छे व्यवहार को कायम रखें, यही आपकी पहचान है। तो देखिए कविता जी, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप कौन बोल रहे हो?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आपने बात की थी।
0: जी, तो चलिए, आपका बहुत बहुत नमस्कार, है ना?
1: बहुत बहुत
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
0: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर
1: जी, आपकी जगह का नाम बताएं।
0: जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
1: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं व्यवहार के ऊपर। अच्छे व्यवहार से आपको जीवन में क्या फायदे होते हैं बताएं। जैसे कि आप उम्मीद करते हैं सामने वाला आपको सुने, आपको समझे, है ना, अच्छा व्यवहार करें, तो क्या आप
0: जी
1: भी अपना अच्छा व्यवहार सभी लोगों को देते हैं?
0: जी सही लोगों से तो सभी लोग सही से पेश आते हैं। अच्छा तो वो है जो बुरे से भी अच्छा बना के चले। और जब लाइट चलता था तो उसमें कुछ लोगों के विचार सुन लेते थे, थोड़ा टाइम मिल जाता था, समझ लेते थे क्या बोलना है। अब ऐसे रिकॉर्डिंग में तुरंत बोलना पड़ता है तो थोड़ा
1: नहीं, देखिए
0: मुश्किल
1: ये
0: है।
1: बहुत ही सामान्य सी बात है ना, जैसे कि
0: जी सर
1: हम
0: तो सामान
1: अपने जीवन में दूसरों से अच्छा चाहते हैं कि वो हमसे अच्छा व्यवहार रखे, अच्छी हमारी
0: जी
1: बातों को सुने, तो क्या हम भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं?
0: जी पर उपदेश कुशल बहुत तेरे होता है। चाहता तो सभी अच्छे हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे सामने वाला, पर करते हैं या नहीं ये नहीं समझते हैं लोग।
1: और ये समझना चाहिए आपको लगता
0: समझना
1: है
0: चाहिए तो
1: ना, क्योंकि जब हम अपना अच्छा व्यवहार लोगों को बांटेंगे तभी तो वो हमसे भी अच्छे से बात करेंगे,
0: बिल्कुल भी जी
1: है ना। एक तरफा नहीं होती कोई भी चीज, मानते हैं?
0: बिल्कुल।
1: क्या करते हैं आप?
0: जी मैं किराने की दुकान चलाता हूँ।
1: जी जी
0: किससे
1: जी
0: मैम हो रही है, किन मैम से बात हो रही है? जी
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
0: श्वेता जी तो नमस्कार दोबारा से।
1: हाँ, जी, तो चलिए आपने फोन किया, हमसे बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्ते जी, हमारा बहुत दिन में लगा जी आज फोन नंबर।
0: चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
1: कोमल विश्वकर्मा
0: जी,
1: तेंदुखड़ा जिला नरसिंहपुर से बोल रहे जी।
0: जी जी जी, तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है और हम आपसे बतलाना चाहेंगे कि आज हमने एक विषय रखा है, उसे बातचीत कर रहे हैं। एक सामान्य सा विषय है, व्यवहार। तो आप कैसा व्यवहार करते हैं अगर सामने वाले?
1: तो जी हम, हाँ, व्यवहार तो जी हमारे यहाँ ऐसा है, बहुत परसवार्थी हैं।
0: जी
1: जी,
0: हाँ जी बताएं।
1: हम बहुत परसवार्थी हैं जी।
0: हाँ हाँ,
1: और हम तो व्यवहार हमरो यह सब बहुत ही ऊंचा व्यवहार है जी।
0: अच्छा, ऊंचा व्यवहार यानी?
1: ऊंचा व्यवहार ऐसा किसी बहन भाई होए,
0: हम
1: उसको मानते, चीकट चढ़ा,
0: सब कुछ। जी जी जी, ये तो आपके घरेलू रिश्ते हो गए, है ना। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं, है ना, बाहर वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपसे अच्छा व्यवहार करें, आपकी बातों को सुने।
1: भाई बहन के समान सबको मानते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी अपना अच्छा व्यवहार उनको देते हैं वापस?
1: जी
0: बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। अनजान लोगों से आप कैसा व्यवहार करते हैं?
1: व्यवहार तो जी हमारे ऐसा है, बिल्कुल भाई बहन के समान। सिर्फ माँ नहीं मिलती संसार में
0: जी,
1: और पिताजी नहीं मिलते।
0: हाँ
1: हाँ, जो नंबर चल रहा है जी रेडियो, क्यों नहीं आ रहा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये कार्यक्रम रिकॉर्डेड है। आज हम आपके फोन जो बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग होगी और कल आपको सुनाई देगा दिन में 11 बजे से। हाँ
1: अच्छा, कल
0: जी जी, आप जहाँ से बात कर रहे हैं बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा सा बाहर आके बात करिए। जी जी जी,
1: हाँ जी। अच्छा, हम उसमें नाम भी बोल सकते हैं जी?
0: अभी हम आपसे विचार जानना चाह रहे हैं, अच्छे व्यवहार से आपको क्या फायदा होता है अपने जीवन में?
1: नहीं जी, व्यवहार से बहुत फायदा होती है जी। व्यवहार से ये है, किसी अगर थोड़ा बहुत कोई बच्चे लोग गलत कर दे तो अपने व्यवहार के खातर कोई दिक्कत नहीं होती। भाई आपके लड़के ने ऐसा किया तो जैसे कहते यार आपके व्यवहार

0: के खातर हमने कोई कार्यक्रम मतलब बच्चों से कुछ नहीं किया।
1: हाँ वो ये मतलब समझते हैं वो लोग कि आपके अच्छे संस्कार और गुण बच्चे में होंगे, आप उन्हें समझाएंगे, है ना, ये वाली बात है। बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार सभी लोगों के लिए करना चाहिए,
0: हाँ जी,
1: तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा।
0: जी, हाँ जी, ऐसा ही है, मेरा परिवार भी, दो बच्चे हैं।
1: जी जी जी,
0: उनके भी व्यवहार बहुत अच्छे, दुकान
1: बिल्कुल
0: सब्जी की,
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल,
0: फर्नीचर का काम करता है
1: जी। अच्छा चलिए,
0: अच्छा जी,
1: कल ये प्रोग्राम आपको दिन में 11 बजे सुनाई देगा, तो आपने फोन किया इसके लिए, हमसे विचार साझा किए, आपका बहुत
0: अच्छा,
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: मेरा

0: तो हमने जाना आपका व्यवहार निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार। हम जो दूसरों से चाहते हैं लगभग वैसा ही व्यवहार हम दूसरों को दें, ये अच्छाई और इंसानियत की मिसाल होगी। हम यही आशा करते हैं कि दुनिया में कितना भी बदलाव आ जाए मगर हम अपने अच्छे व्यवहार को कायम रखेंगे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, आपकी रेडियो मित्र श्वेता को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, ये जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान व्यक्तित्व थे। उनके लेखन ने लोगों को नया आत्मविश्वास दिया और गौरव की भावना को और मजबूत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका संघर्ष, नेतृत्व और अद्वितीय योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। मध्यप्रदेश की माटी के गौरव चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र द्वारा आज भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित प्रदेश के 38 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये खूबसूरत गीत, जावेद अख्तर के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, और इसी गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचालिया, प्रियंका पंचालिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचालिया ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमराज से, आवाज़ है महेंद्र कपूर की, साहिर के बोल हैं और संगीत रवि का। पसंद किया है राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनका पूरा परिवार। आइए सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमें पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। और एक और पत्र हमें लिखा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और महादेव केशरी ने। ये सभी सुनना चाहते हैं उमराव जान फिल्म की बहुत ही प्यारी सी गज़ल आशा भोसले की आवाज़ में। शहरयार के बोल हैं और तर्ज बनाई है खयाम ने।

पाकीज़ा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू की पोल हैं और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित, छोटू, गुनगुन और उनका पूरा परिवार।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे,
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
7: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए।

0: सतर्क रहिए।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी, धीरे धीरे।
6: बड़े अच्छे लगते हैं।
4: क्या

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

कांतारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 8वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़ देते हैं और पैठार गांव आ जाते हैं। उधर राजा का प्रिय अश्व नीलमणि अवंती पहुंच जाता है। राजा भर्तृहरि पैठार से आगे जाना चाहते हैं, परंतु मेघों की तेज झड़ी ने उन्हें रोक रखा है। अब आगे

भर्तृहरि को पैठार गांव में पहुंचे 10 दिन बीत गए। 3 दिवस तो मेघों ने विश्राम ही नहीं किया, निरंतर झड़ी लगी रही और 3 दिन से आकाश में ठहरे रहकर कभी फुहारें छोड़ते, कभी पवन से अटखेलियां करते। अब वह वन, नदी, नालों का पानी उतरने और मार्ग के चलने योग्य हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव के लोग इन्हीं बहानों से उन्हें जाने नहीं दे रहे। किंतु क्या ग्रामणी का आग्रह तथा ग्रामजनों की प्रसन्न आत्मीयता ही उनके रुक जाने का एकमेव कारण है? सर्व सुख संपन्न ग्रह और राज्य को छोड़ने के पश्चात इस दूरस्थ विपन्न गांव में राजा भर्तृहरि को स्वयं के रोके जाने का आशय क्या कुछ और भी है? तभी वीरभद्र

0: प्रणाम देवता।
1: महाकाल कल्याण करे। कोई विशेष बात है मुखिया?
0: एक प्रार्थना है अवधूत महाराज।
1: कहें।
0: आज का दिन हम लोगों के लिए वर्ष भर की सुख समृद्धि की नींव का दिन होता है, कृषि कार्य के प्रारंभ का दिन। हलों के आगे आगे कन्याएं मंगल कलश लेकर चलती हैं और कोई पवित्र मान्य व्यक्ति खेतों में अक्षत बिखेरता है। देव कृपा से आप देवता स्वरूप हमारे मध्य हैं, तो एक अंजुरी अक्षत उगरने की कृपा करें, हम धन्य हो जाएंगे।
1: मुखिया, आप ये सम्मान गांव के ही किसी सुयोग्य जन को दें, मैं इस योग्य नहीं हूं। आप मुझे जाने क्या समझ बैठे हैं, मुझे इतने समय यहां नहीं रुकना चाहिए था।
0: मानता हूं महाराज, हमने आपको घर संसार की माया में रोक लिया, इंद्रदेव भी सहायक रहे, क्या पता कि ये विधाता का ही विधान हो। इतनी सी प्रार्थना और स्वीकृत कर लीजिए। शची, शची।
2: हाँ बाबा।
0: महाराज के स्नान का जल रख दे, आज अक्षत यही छीटेंगे।
3: क्या क्या सचमुच बाबा?
0: अपनी देह को संभाल बावरी, क्षमा करना महाराज, 20 की हो गई फिर भी अबोध और सावधान है। भाग गई, मैं चलता हूं ग्रामजनों को उत्सव के लिए एकत्र करने।

0: क्या यहां से आरंभ हो सकता है एक नया जीवन? इन वनवासियों की ही भांति कितना सहज, कितना अकृत्रिम। अकाल हो अथवा सुकाल, जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य के प्रति इनमें उत्सुकता तो है, किंतु हाय हाय नहीं। और एक तुम हो राजा भर्तृहरि, पीढ़ियों की चिंता कंधों पर लादे हुए। कामिनी कंचन और भूमि की अनवरत भूख। कितनी स्त्रियां चाहिए तुम्हें, कितना स्वर्ण, कितना राज्य। एक पत्नी का मन वश में नहीं रख पाए तो भाग निकले, विराग से या फिर ईर्ष्या से। पूछो अपने आप से, पूछो।
1: देवता, जल रख दिया है, स्नान कर ले।
0: नहीं, मैं नदी तट पर जा रहा हूँ, तुम अनावश्यक श्रम ना करो।
1: क्या मैं इतनी सी सेवा की योग्य भी नहीं?
0: नहीं नहीं, तुम तो योग्य से भी योग्यतर हो, मुझे प्रिय भी हो, किंतु
1: आपको मात्र प्रिय होने का सौभाग्य मैं जीवन भर सहेज लूंगी। मुझे ज्ञात है कि तपस्वी और सिद्ध माया मोह से दूर रहते हैं। उनके लिए स्त्री केवल माया है।
0: तुम्हें संसार का अनुभव बहुत कम है शचि। मैं वो नहीं जो बाहर से दिखता हूं, मैं एक भागता हुआ मनुष्य हूं। पुर से, परिजन से, परिचय से, अपने आप से भागता हुआ। इस वनग्राम के लिए मैं और मेरे लिए ये वनग्राम एक आकस्मिक संयोग मात्र है। तुम्हारे सामने जीवन का एक सुदीर्घ पथ पड़ा है। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ।
2: शची, शची, शीघ्र निकल पुत्री, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: आई बाबा। बाबा, कलश कहाँ है?
2: अरे कलश वृंदा ने सजा लिया है, तू चल। चल तू, मैं महाराज को लेकर आ रहा हूँ।
1: जी।
3: महाकाल की
4: जय,
3: राम देवता की
4: जय,
3: सत्य विनायक की
4: जय,
3: महाकाल की
4: जय,
3: सत्य विनायक की
4: जय,
3: हरि माता की
4: जय,
3: हरि माता की
4: जय।
2: महाराज दाहिनी मुट्ठी में लेकर अक्षत राह पर दिखे।
5: भर्तृहरि को शिप्रा तट के बसंत उत्सव का स्मरण हो आया। वैभव, ऐश्वर्य और सौंदर्य से गर्वोन्नत कुलांगनाएं, जिनके लाक्षा रंजित पदों से छिप्रा के तट रंगीन हो जाते हैं, स्वर्ण और रजत दीपों का प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन, वस्त्राभूषणों की उद्दीप्त मोहकता, कलाधरों के गायन वादन नृत्य और महापंडितों का मंत्रोच्चार, उज्जैनी जैसे अलकापुरी हो गई हो, भर्तृहरि जैसे इंद्र हो और रानी पिंगला हो गई हो। शचि, मद और मदन से आरक्त रसिकों की अपनी अपनी प्रियतमाएं, अपनी अपनी शचि।
2: अक्षत उलीचे देव।
3: महाकाल की
4: जय,
3: राम देवता की
4: जय,
3: सिद्ध विनायक की
4: जय।
5: देवताओं के जयकारे के स्वर गूंजने लगते हैं।
6: अवधूत महाराज, देवता की कृपा से आने वाला वर्ष शुभ संकेत दे रहा है। हलोत्सव के बीच अनेक शुभ संकेत हुए, फिर हमारी शचि भी तो साथ थी। दो वर्ष ये अस्वस्थ रही, सो कलश यात्रा से भी वंचित भी रही, हमें अकाल भोगना पड़ा। इस बार उसने कलश धरा है शीश पर, आप देखना, इस बार मेघ ही नहीं भूमि पर श्री भी बरसेगी। हमारे ग्राम का सौभाग्य ये है कि इस बार साक्षात सिद्ध पुरुष के हाथों अक्षत छीटे गए हैं, अब काल देवता भी प्रभावी नहीं हो सकेगा।
1: देव, वृंदा भौजी कुछ कह रही हैं।
0: सुन रहा हूँ देवी शची।
1: भौजी सुना तुमने, तुम्हारे अवधूत ने मुझे देवी बना दिया है।
6: चुप रहे बावरी, चुप। देवों सिद्धों से परिहास नहीं करते, इसे क्षमा करें महाराज। बांस जैसी बढ़ तो गई है पर अबोध है।
0: और असावधान भी।
6: किस चिंता में है देवता?
0: वृंदा देवी, आज शची कुछ अधिक वाचाल है।
6: उसका दोष नहीं है देवता, यौवन का आवेग ऐसा ही होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं?
0: तथापि सन्यासी के लिए आवश्यक नहीं कि वो किसी को बताकर स्थान छोड़े, किंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कल प्रातः मैं यहां से निकल जाऊंगा।

0: धर्म पत्नी हो।
1: धर्म? वो तो राज सेवक लूट कर ले गए। हम वनवासी अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करते हैं। काम हमारे समाज में वर्ज्य नहीं है, किंतु मर्यादित है। सहवास हमारे बीच की दैनंदिन प्रकृति है, किंतु सहवास से महत्वपूर्ण है विश्वास। अनिरुद्ध का मुझ पर और मेरा उस पर आकंठ विश्वास है, किंतु ग्लानि की एक फांस मन में धसाए बैठा है। राज दस्यों से वो मेरा न तो सम्मान बचा पाया और न मेरी कोख। उस ग्लानि वश वो उन्मादी हो गया, उन्माद में कुछ कर बैठता है और फिर पश्चाताप करने लगता है।
0: तो फिर मुझे उसके पास ले चलो, उससे मिलना मेरे लिए आवश्यक है।
1: तब तो उसे ही आना पड़ेगा, मैं लाऊंगी उसे। वृंदा उसकी पत्नी ही नहीं, मित्र और सहचर भी है। देवता, आज आपको मड़ैया में ही विश्राम करना है।
0: क्यों, कोई विशेष बात है?
1: मेरा दूर का बंधु बसंत उज्जैनी जाते हुए एक रात के लिए यहीं रुक गया है। आज वो अपने कवित्त गाएगा, बांसुरी और मृदंग के साथ। आज गांव में उत्सव की रात है देवता।
0: कवि है? नाम क्या है उसका?
1: नाम है बसंत, चंद्रपुर में रहता है। उसकी प्रिया चारु मित्रा भी कवित्त कहती है। यूं कहे तो उसे उसी से ये विद्या भी मिली है। बसंत की साध है कि राजा भर्तहरि को वो अपने कवित्त सुना पाए, इसीलिए वो उज्जैनी जा रहा है। राजा गुणीजनों का सम्मान करते हैं, स्वयं भी तो कवि है, विद्वान है। बसंत ने राजा भर्तहरि के संस्कृत पदों को जनपदीय भाषा में लिखा है, चाहता है वो उन्हें सुने और बताएं ठीक है या नहीं।
0: मैं बसंत की कविता सुनना चाहूंगा।
1: ये उचित नहीं होगा महाराज, हम वनवासियों के यहाँ कोई भी उत्सव मदभान के बिना संपन्न नहीं होता। ग्राम जन कविता के प्रति जितने ललायित हैं, उतने ही मदभान के लिए अधीर भी। ऐसे में आपकी पवित्र उपस्थिति कैसे संभव बनेगी?
0: उचित है आप लोग उत्सव मनाएं, किंतु हमारे आग्रह से गुणी बसंत को अवगत करा दें।
2: महाराज, राजा, सन्यासी और गुणी तीनों हठीले होते हैं। बसंत भी आपको भर्तृहरि के पद सुनाने के लिए उत्सुक है, किंतु यह भी कह रहा है कि एक चषक भर मद के बिना स्वर की तंद्रा नहीं टूटेगी, और आपके सामने आने में उसका संकोच बन गया है।

0: ब्राह्मणी है ना यहाँ, इसका अनुशासन सब मानते हैं, संभाल लेंगे।
1: खूब संभाल लेंगे, इनके अब सुनेगा ही कौन। युवक युवतियों को छोड़ वृद्ध और अधेड़ भी उत्सव का बहाना खोजते हैं और ठीक हो जाते हैं, और तब ग्रामीण वीरभद्र भी चालू हो जाएंगे, युवकों से छेड़ करेंगे और फिर बेसुध होकर वहीं लुढ़क जाएंगे।
2: चुप कर शचि, चुप कर। महाराज, प्रहर भर रात्रि बीत गई है, आप चलकर विश्राम करें। शची कुछ अस्वस्थ लगती है और वृंदा भी श्लथ प्रतीत हो रही है। ये दोनों आपको आवास ले जाएंगी, वहां आप आराम करें।
1: और ग्रामणी वीरभद्र को उन्मुक्त छोड़ दें ताकि पीछे की होड़ का नेतृत्व कर सकें।

0: संयम शची संयम, बहुत हुई तेरी ये प्रगल्भता। चलिए देव।
1: कोलाहल शांत करें, कृपया बोलचाल बंद करें, मैं प्रस्तुत हूँ, मेरी ओर ध्यान दें।
2: बांसुरी पर एक धुन बजाता है, कोलाहल शांत हो जाता है। बांसुरी की धुन रोक कर मृदंग पर थाप देता है, भीड़ चुप हो जाती है।
1: राजा भर्तृहरि के कुछ पद श्रवण करें।
3: हाँ हाँ सुनाइए।
4: धन्य हो, धन्य हो,
3: धन्य हो।
1: मैं ठहरा नदी, वन, पर्वत, मेघ, चंद्र, चंद्रिका और नायक नायिकाओं पर रचने वाला भाषा का साधारण तुकबंद, अज्ञानी और मूर्ख। मेरी प्रियतमा ही भर्तृहरि के इन श्लोकों को जानती पहचानती है। उसी ने कहा है कि यदि प्रिय मुझे कुछ कहना चाहते हो तो इन पदों को जनपदीय भाषा में ढालकर जनता के बीच गाओ। तो सज्जन वृंद श्रवण करें, राजा भर्तृहरि ने कहा है।
5: मेरे पद ये सुनाएगा, ऐसा क्या है इन पदों में? इतने दिनों संयत में रखा मन विगत की ओर क्यों देख रहा है? क्या काव्य का आत्मराग विराग की ओर अग्रसर भर्तृहरि के पांव की श्रृंखला बनने जा रहा है? रुक रे मन, रुक। भर्तृहरि तेरे काव्य का क्या प्रयोजन, क्या अर्थवत्ता, कौन सी सार्थकता? वो अपनी भार्या तक को तो संतुष्ट नहीं रख सका,

0: न सुने गए काफी का इन निरक्षर वनवासियों पर ऐसा प्रभाव, इतना निरपेक्ष आग्रह। राजा और पुरुष के रूप में असफल भर्तृहरि, क्या यही है तेरे काव्य की सफलता? फिर श्रेयस्कर क्या है, राजा होना या कवि होना?
1: कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वृंदा और शची आपस में वार्तालाप कर रही हैं।
2: शची, प्रतीत होता है कि अवधूत अभी जाग रहे हैं।
3: सोए तो तुम भी नहीं हो भौजी, शायद प्रतीक्षा हो रही हो, चली जाओ।
2: अनिरुद्ध जानता है कि मैं मद की गंध सह नहीं पाती, एक समय में एक वृंदा या फिर मद।
3: भौजी, अवधूत कल चला जाएगा।
2: अवधूत ने कहा है कि उसे जाना ही है।
3: फिर मैं क्या करूं?
2: शची, मेरी बहना, बाढ़ यौवन काल में नदी उद्धत कर तर तीरों को फलांग कर मैदानों तक फैल जाती है, लेकिन जब पानी उतरता है तो पीछे क्या रह जाता है, क्या छूट जाता है? कीचड़, टूटे तटबंध, माटी में लिपटे हुए किनारों के पेड़, मटमैला पानी और सांसों को विदीर्ण करती ऊब भरी ये दुर्गंध, एक एक बड़ा सा पछतावा। सुन शची, नदी की बाढ़ की चिंता ग्रामणी को भी है, वो चाहते हैं कि तू किसी को चुन ले।
3: चुन लिया है मैंने भौजी।
2: और वो तुझे छोड़कर कहीं भाग निकला तो तू क्या करेगी?
3: उसके लौटने की प्रतीक्षा।
2: ओह, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ग्रह त्यागी वापस लौटकर नहीं आते।
3: पर ये वैसा नहीं है भौजी, उसकी आंखों में राग है, अधर लोलुप है, भंगिमाओं में आमंत्रण है। भले वो कितना ही छुपाने का प्रयास करे, किंतु उसका पौरुष छुपा नहीं रह पाता।
2: शची, अपनी आतुरता को नियंत्रित कर, बहना मुझे एक वचन दे।
3: कैसा वचन?
2: ये कि तू उसकी

0: लौटने की प्रतीक्षा अधिकतम 3 वर्ष तक ही करेगी, और यदि वो लौट कर नहीं आया तो तू उस पुरुष से विवाह कर लेगी जिसे मैं बताऊं।
1: स्वीकार,
0: मैंने सोच लिया है कि मैं तेरी सहायता करूंगी। तेरी ही तरह वो भी इस समय असंभव की कामना में है, अस्थिर और चलायमान, ज्वार उतरे समुद्र की भांति, जब उसके हाथों में खाली शंख, सीपियां और मरी हुई मछलियां रह जाएंगी तो उसे लौटना ही होगा।
1: किसके विषय में कह रही हूं फौजी?
0: अब उठ, घड़े में जल होगा, स्नान कर ले और उन्हीं वस्त्रों को पहन ले जो तूने उत्सव में धारण किए थे। अवधूत कल चला जाएगा।
1: फौजी, मुझे विश्वास है यदि जाएगा भी तो शीघ्र ही वापस भी आएगा।
0: विलंब न कर, अभी रात बीतने में एक पहर का समय है, अभी सारा जग सो रहा है। जाकर जगा ले अपने पुरुष को जो अवधूत की काया कंदरा में छुपकर सो रहा है।
1: मुझे भय लगता है।
0: मन को साध, प्रातः अवधूत चला जाएगा और उसके साथ ही ये भय भी और उहापोह भी।

0: कौन कौन हो देवी जो योगी को विचलित करके भोग की कीचड़ में खींच रही हो?
1: मुझे क्या है कि तुम केवल योगी नहीं हो,
0: तुम शची, तुम शची, अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं।
1: मैं जानती हूं कि तुम पुरुष हो।
0: शची, तुम चाहती क्या हो? कोई देख लेगा तो?
1: कोई नहीं देखेगा। मैं रतिदान चाहती हूं, मुझे स्वीकार कर लो। निराश कर दोगे तभी इसी क्षण आत्महत्या कर लूंगी। तुमने मेरे तीक्ष्ण कटार की चपलता देखी है ना? बोलो बोलो, क्या स्वीकार है, मैं अथवा मेरा शव?
2: शची ये कहकर भर्तृहरि के वक्ष में सिर गड़ाकर सिसकने लगती है। भर्तृहरि भी कामासक्त हो जाते हैं। शची थरथराते हुए अधर से कहती है,
1: एक रात और रुक सकोगे तपस्वी?
0: ये उचित होगा क्या शची?
1: और नहीं कहूंगी रुकने के लिए, बस बस एक रात और।
0: फिर मिलना संभव होगा क्या?
1: हाँ होगा, वृंदा भौजी संभव बनाएगी, आज भी उन्हीं ने ये संभव किया है।
0: एक रात यदि रुका भी तो तत्पश्चात तो मुझे जाना ही है। तब
1: लौटने के लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी।
0: तुमने तो ये भी नहीं जाना कि मैं कौन हूँ।
1: जोगी जति का कोई नाम कोई ग्राम होता है क्या? लेकिन मैं तुम्हें खूब जानती हूँ, जान गई हूँ।

0: प्रातःकाल शचि उल्लासित स्वर में वृंदा को बताती है,
1: वृंदा भाजी जाग रही हो क्या? अब तो ताज नहीं जा रहा है, एक रात और वो यही रहेगा।
2: तेरे स्वर की खनक बता रही है कि तार कस दिए हैं। मैं जान गई हूँ
1: वाजी।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 8वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार दिव्या शुक्ला, वीरभद्र राकेश चैमिनी, भर्तृहरि अरविंद बिलकनिया, शचि विभा श्रीवास्तव, वृंदा सरोज शर्मा, बसंत बालेंद्र सिंह, संयोजक राकेश ढौंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर पैठार गांव आ जाते हैं। यहां ग्रामीण तरुणी शचि से उनका मिलन हो जाता है। आपको ये भी याद होगा कि जब राजा वृक वन से जा रहे थे तो एक अपरिचित ने उनके प्राण बचाए थे और उनके प्रिय अश्व को आचार्य नागदत्त के आश्रम में बांध दिया था और यहाँ से वो अश्व सकुशल अवंती पहुंच जाता है। कौन है वो अपरिचित जो राजा के प्राण बचाता है? अश्व नीलमणि को अवंती तक पहुंचाने की युक्ति सुझाता है। अगले भाग में हम उसी अपरिचित से परिचय प्राप्त करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत कामिनी काय कांतारे का 8वां भाग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, यह जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान व्यक्तित्व थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका संघर्ष, नेतृत्व और अद्वितीय योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। मध्य प्रदेश की माटी के गौरव चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस की सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर श्रमिक साथी के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 38 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 648 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं। अब समय हो रहा है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा।

हौसलों के पंख तैरते हैं खुली उड़ान में, आज की नारी कम नहीं किसी आसमान में। समेटे है खुद में वो हर रंग कायनात का, बजूद गूंज रहा पूरे जहान में। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज के महिला सभा कार्यक्रम का। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी सखी शालिनी सोनी। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, महिला सभा, जी हाँ, कार्यक्रम महिला सभा, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सुकून है, एक रिश्ता है हमारा और आपका, एहसास है हमारी ताकत है और हमारी ममता का एक एहसास है, हमारी समझ सूझबूझ, हमारे हौसलों का, जिसे हम हर रोज़ अपने घर और समाज को संवारती हैं। और सखियों, कहा गया है ना कि जहाँ नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ खुशियाँ खुद ब खुद खिंची चली आती हैं और हम सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे इस बात का गवाह हैं कि जब हम एक साथ मिलती हैं ना, तो सकारात्मकता की एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आज के इस महिला सभा में हम खुलकर बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, सीखेंगे जिंदगी के सफ़र को और हसीन बनाने के ढेर सारे संकल्प भी लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम है हमारा और आपका। सखियों, आप जानती हैं ना, हमारे और आपके बीच सेतु का काम करता है प्रसारण, यानी कि हमारे और आपके बीच की कड़ी है प्रसारण। 23 जुलाई यानी आज के दिन हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 जुलाई सन 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई और सफल शुरुआत के बाद सन 1957 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया आकाशवाणी। जी हाँ, आकाशवाणी। और ये आकाशवाणी है, जी हाँ, ये आकाशवाणी है सखियों, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक एहसास है, एक भरोसा है। मनोरंजन के साथ साथ खेती किसानी की बातें, क्रिकेट का रोमांच, बहुत सारे सुझाव, बहुत सा ज्ञान। रेडियो ने देश दुनिया को तमाम खबरों से जोड़ा और रेडियो हर नागरिक का बन गया सच्चा साथी। सखियों, समय बदला, तकनीकें बदलीं और ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन से निकलकर हम रंगीन स्मार्टफोन के दौर में भी आ गए, लेकिन तब भी, आज भी, तब से लेकर आज तक उसका बदलता स्वरूप हमारे साथ है और हमारा सच्चा साथी बना हुआ है रेडियो, देश के अंतिम छोर तक आवाज़ पहुंचाने का सशक्त माध्यम आज भी सखियों रेडियो प्रसारण ही है। तो आइए आज इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम सलाम करते हैं उन सभी तकनीशियनों को, उद्घोषकों को, कलाकारों को, पत्रकारों को, जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी और आपकी सुबह और शाम सुरीली बनाते हैं। और सबसे बड़ा शुक्रिया आपको, जी हाँ, यानी हमारी प्यारी प्यारी श्रोता सखियों को, जिनके बिना रेडियो प्रसारण का सफर अधूरा है। तो सखियों, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए रेडियो के साथ महिला सभा कार्यक्रम के माध्यम से।

0: सखियो, मोदी जी ने कहा है ना कि नारी शक्ति ही देश की शक्ति है, और इसी सोच को बढ़ावा दे रही है पीएम मुद्रा योजना। जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना, और इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मतलब छोटे बिजनेस का बड़ा बनाने वाली योजना। सखियो, आपके मन में क्या है? आप अपना कोई सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, अचार पापड़ का बिजनेस करना चाहती हैं, या टिफ़िन सर्विसेज, डेयरी, बकरी पालन, या ऑनलाइन रिसेलिंग, जो भी सपना आपका है उसे पंख देगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और सबसे बड़ी बात तो सखियो इसमें ये है कि वो भी बिना गारंटी के और बिना किसी सिक्योरिटी के। कोई भी बैंक आपसे घर जमीन गिरवी नहीं मांगेगा सखियो। हाँ, बस आपके पास होना चाहिए एक जज्बा और एक बिजनेस प्लान। ब्याज भी कम है, और चुकाने के लिए पता है सखियो लगभग 5 साल तक का समय है। तो यकीनन सखियो, जब जो चूल्हा चौका संभालने वाली नारी है ना, कलम और हिसाब संभालती है ना, तो देश भी चलता है और घर भी चलता है सखियो। तो सखियो, देर किस बात की, अपने नज़दीकी बैंक, जनधन केंद्र या CSC सेंटर जाइए, आधार कार्ड, फोटो और ले जाइए बिजनेस का एक आइडिया, फॉर्म भरिए और करा लीजिए अपना लोन। सखियो याद रखिए, सपना आपका, हौसला आपका, लेकिन साथ सरकार का। तो फिर देर किस बात की, उठो, बढ़ो और बन जाओ आत्मनिर्भर भारत की असली शिल्पकार। सखियो, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे इस कहानी के माध्यम से। सौव्या ब्यास लेकर आई है कहानी दो दीपक।
1: मेरी अगली कहानी का शीर्षक है दो दीपक। कस्बे का नाम था बसंतपुर, इतना छोटा कि ट्रेन वहां नहीं रुकती थी। लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से जानते थे। किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का पड़ोसी बसंतपुर की सबसे अनोखी पहचान थी। एक मंदिर और एक मस्जिद, जिनके बीच सिर्फ एक दीवार थी। यह दीवार कोई ऊंची या भव्य नहीं थी, साधारण ईंटों से बनी, समय से थोड़ी झुकी हुई। बचपन में बच्चे इसी दीवार के सहारे गेंद उछालते थे। कभी गेंद मंदिर में गिरती तो कभी मस्जिद में, और हर बार लौट आती। मंदिर में पूजा करते थे पंडित हरिदत्त शास्त्री जी। सफेद धोती, हल्की झुकी हुई पीठ और आंखों में एक स्थायी शांति। उन्होंने अपने पिता से पूजा सीखी थी, और पिता ने अपने पिता से। उनके लिए धर्म कोई शोर नहीं था, एक आदत थी, जैसे सांस लेना। मस्जिद में इमाम साहब थे, मौलवी शराफत अंसारी। धीमी आवाज, गहरी सोच और चेहरे पर हमेशा सवालों की परछाई। वे अक्सर कहा करते थे, ईश्वर ऊंची आवाज में नहीं, सच्चे दिल में रहता है। सालों से ऐसा ही चला आ रहा था। सुबह मंदिर की घंटी बजती और उसके थोड़ी देर बाद मस्जिद से अजान आती। कभी कभी दोनों आवाजें हवा में मिल जाती थी, और किसी को यह अजीब नहीं लगता। हर शुक्रवार और सोमवार पंडित हरिदत्त जी

0: मौलवी शराफत जी कस्बे की इकलौती चाय की दुकान पर मिलते। राजनीति पर बात नहीं होती थी, धर्म पर भी बहस नहीं होती थी, बात होती थी फसलों की, बच्चों की, बारिश की। पर समय बदल रहा था। पिछले कुछ महीनों से बसंतपुर में बाहर की आवाजें आने लगी थीं। शहरों से आए लोग, तेज बोलने वाले, धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले, दीवारों पर नए नारे लिखे जाने लगे, लोगों के भीतर पुराने डर जगाए जाने लगे। पंडित हरिदत्त यह सब देखते रहे थे और मौलवी जी भी। दोनों जानते थे जब धर्म राजनीति के हाथ लग जाता है तो सबसे पहले इंसानियत घायल होती है। फिर वह दिन आया, शाम होते होते कस्बे में अजीब बेचैनी फैल गई। बाजार जल्दी बंद हो गए, लोगों ने दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। दूर कहीं शोर था, नारे, दौड़ते कदम और टूटते शीशे। तभी बिजली चली गई, पूरा बसंतपुर अंधेरे में डूब गया। अंधेरा सिर्फ रोशनी का नहीं था, अंधेरा भरोसे का था। मंदिर में पंडित हरिदत्त अकेले बैठे थे। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। मन में सवाल उठा, क्या आज भी लोग तुझे उसी तरह मानते हैं जैसे पहले? मस्जिद में मौलवी शराफत जी अकेले थे, कुरान खुली थी और दिल भारी। उन्होंने सोचा, क्या धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है या तोड़ने के लिए? तभी दीवार के उस पार से एक धीमी सी आवाज आई, पंडित जी आप। यह मौलवी जी की आवाज थी। पंडित जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मौलवी साहब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, मौलवी बोले, पर कस्बा ठीक नहीं लग रहा। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर मौलवी जी ने कहा, मेरे पास एक माचिस है पर दिया नहीं। पंडित हरिदत्त के हाथ में दिया था। उन्होंने दिए को देखा, फिर दीवार को। एक पल को डर लगा, पर वो उठे और उन्होंने सोचा, अगर किसी ने देख लिया तो? फिर भीतर से आवाज आई और उन्होंने कहा, मैं आ रहा हूं। उस अंधेरे, भय और अफवाहों से भरे माहौल में एक पुजारी मंदिर के बाहर निकला। मंदिर के पीछे से होते हुए मस्जिद की ओर बढ़ा। दूर कहीं कोई पत्थर फेंका गया, किसी ने नारा लगाया, पर पंडित जी नहीं रुके। मस्जिद का दरवाजा खुला, मौलवी जी सामने खड़े थे। दोनों की आंखें मिली। उस पल ना कोई पुजारी था ना कोई मौलवी, बस दो इंसान थे। मौलवी जी ने माचिस जलाई और दिया जल उठा। छोटी सी लौ पर बहुत गहरी। मौलवी जी ने दिया दोनों हाथों से थामा। आवाज भर्रा गई, पंडित जी आज यह दिया आपके घर के सामने जलना चाहिए। वे दिया लेकर मंदिर की ओर बढ़े। कुछ देर बाद वह दिया मंदिर में जल रहा था। फिर पंडित जी ने दूसरा दिया निकाला और मौलवी जी से कहा, यह दिया मेरे घर से है, आज यह आपके नाम। दोनों ने दिए बदल लिए, मंदिर में मस्जिद का दिया, मस्जिद में मंदिर का। बाहर भीड़ थी पर शोर कम होने लगा था। कुछ लोग खिड़कियों से यह दृश्य देख रहे थे। किसी ने कहा, अरे अरे ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, जो हमें करना चाहिए था वो ये लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग बाहर आए, कोई मंदिर के पास खड़ा हुआ, कोई मस्जिद के। ना कोई नारा था ना कोई पत्थरबाजी, बस रोशनी। उस रात बसंतपुर में कोई सोया नहीं पर डरा भी नहीं। अगली सुबह बिजली आ गई, अखबार आए, शहरों में फिर तनाव था पर बसंतपुर एकदम शांत था। मंदिर और मस्जिद की साझा दीवार पर किसी ने चुपचाप लिख दिया था, ईश्वर अलग अलग नामों से नहीं एक ही रोशनी से पहचाना जाता है। पंडित हरिदत्त और मौलवी शराफत जी फिर उसी चाय की दुकान पर बैठे थे। मौलवी जी मुस्कुराए, पंडित जी कल की रात बहुत लंबी बीती। पंडित जी ने बोला, हाँ पर उजली भी थी। दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे और बसंतपुर ने एक बार फिर से साबित कर दिया, जब इंसान दिया बन जाता है तो अंधेरा अपने आप हार मान जाता है। धन्यवाद।
1: सखियों, अभी हम सुन रहे थे कहानी दो दीपक। कहानीकार थी सोवियत व्यास। और अब बढ़ते हैं आगे रूप लावण्य की ओर। सखियों, खूबसूरत दिखने के लिए केवल फैशन को फॉलो करना काफ़ी नहीं है, है ना? एक और तरीका है जिससे आप अपने लुक्स को चेंज कर सकती हैं और बेहतर दिख सकती हैं। जानती हैं कैसे? चलिए मैं बताती हूँ आपको। आज आप को मैं बताऊँगी क्रम रूप लावण्य में कि आप अपने हेयर कट को कैसे इन्हेंस कर सकती हैं अपने चेहरे के अनुसार। यानी कि जो आपका हेयर कट है वो होना चाहिए आपके चेहरे के अनुरूप। सखियों, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा स्टाइल आपके चेहरे पर सबसे अच्छा लगेगा। ख़ासकर ऐसा हेयर कट होना चाहिए जो आपके चेहरे की बनावट को निखारे और आपकी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बनाए। और देखो ना सखियों, हम सभी के जो चेहरे हैं ना, उनका आकार अलग अलग होता है। तो जब आकार अलग अलग है तो कटिंग भी अलग अलग होनी चाहिए बालों की, है ना? तो अगर आपका चेहरा सखियों गोल है तो लेयर्ड कट या लंबे बालों का स्टाइल आप ले सकती हैं। ऊपर से वॉल्यूम देकर हेयर कट ले सकती हैं, आपका चेहरा बेहतर लगेगा। और अगर चेहरा अंडाकार है तो आप लकी हैं। जी हाँ सखियों, आप लकी हैं क्योंकि अंडाकार चेहरे पर अधिकतर हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं। आप छोटे लेयर्ड या ट्रेंडी हेयर कट आसानी से अपना सकती हैं और लग सकती हैं खूबसूरत। चौकोर चेहरे वाली महिलाएं सॉफ्ट लेयर्ड, हल्के बेड्स और टेक्सचर वाले हेयर कट ट्राई कर सकती हैं। अगर चेहरा लंबा है तो फ्रिंज, बैग्स और साइड वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल अच्छे लगेंगे सखियों। सखियों, याद रखें कि हेयर कट कराने से पहले अपने बालों की बनावट का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर बाल पतले हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने वाले कट को चुन सकती हैं आप, और अगर बाल घने हैं सखियों तो लेयर्ड कट एक अच्छा विकल्प होगा। याद रखें सखियों, सिर्फ ट्रेंड देखकर हेयर कट ना चुने। जो स्टाइल किसी और पर अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो आपके ऊपर ना अच्छा लगे, या ज़रूरी नहीं कि आपकी पर्सनालिटी को और बढ़ाए वो, है ना सखियों? तो हमेशा ध्यान रखें सखियों कि चेहरे के शेप और बालों की क्वालिटी और अपनी पसंद का हेयर कट चुने। तो सखियों, अगली बार जब भी आप पार्लर जाएँ तो पहले चेहरे की बनावट को समझें, खूबसूरती को बढ़ाने वाला हेयर कट चुनें। यकीनन खूबसूरत दिखना सिर्फ फैशन नहीं है सखियो, बल्कि सही चुनाव करने की कला है। तो दिखें खूबसूरत, लगें खूबसूरत सखियो, और रहें खूबसूरत।

सखियों, बारिश के दिनों में हमारी भूमिका यानी हम मम्मियों की भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है ना। इन दिनों परिवार की सेहत और स्वच्छता का ध्यान जो हमें रखना होता है ताकि हमारी फैमिली फिट रहे। मानसून का मौसम सखियों गर्मी में तो राहत दे ही देता है, लेकिन इस समय बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जगह जगह पानी जमा हो जाने से मक्खी मच्छर का आतंक बढ़ जाता है, इसलिए सबसे पहले सखियों पानी निकासी की व्यवस्था उत्तम रखें। अपनी जो टंकी है, गमले हैं या अन्य कोई ऐसा स्थान जहां पानी रुकता है उसकी समय समय पर सफाई करते रहें और पानी को रुकने ना दें। हाँ, अब बात करें अगर पीने के पानी की, तो इसका भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन दिनों हमें उबाल कर पानी पिएं या फिर तो आरओ का पानी ही इस्तेमाल करना है। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो खाना घर का ही लेके जाए बेहतर होगा। बाहर का खाना इन दिनों अवॉइड करें। बारिश में भीगने से भी बचना है सखियो, और अगर हम भीग जाते हैं या बच्चे भीग जाते हैं या परिवार का कोई भी सदस्य भीग जाता है तो हमें उसको अच्छे से पहले सुखाना है। कुछ गरम गरम दूध या हल्दी का दूध उसे देना है जिससे उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े और सर्दी जुकाम का जो खतरा है वो ना हो। बच्चों तथा बुज़ुर्गों को इस मौसम में खासकर हमें उनका ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना सखियो, वो थोड़ी कम होती है। इन्हें सर्दी जुकाम बुखार खांसी जल्दी हो जाता है, और हाँ, अगर हो गया है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है सखियो। अगर इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है ना सखियो, तो आप इन्हें की डाइट में अदरक, तुलसी, काली मिर्च और हल्दी को शामिल करें। इन्हें विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खिलाएं, हर्बल टी पिलाएं और बच्चों को तो स्पेशली हल्दी वाला दूध दें सखियों। बारिश में बड़ों व बच्चों को कपड़े व जूतों की स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखना होता है ताकि किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए। घर में सखियो हवा की उचित आवागमन रखें जिससे नमी ना पनप सके। तो सखियो, इस तरह अगर हम स्वच्छता, संतुलित आहार, साफ पानी और सावधानीपूर्ण आदतों का ख्याल रखते हैं ना, या उन्हें अपनाते हैं बारिश के मौसम में, तो हम और हमारा परिवार स्वस्थ रह सकता है और इस मौसम का मज़ा ले सकता है। और फिलहाल सखियो, हम मज़े लेते हैं इस प्यारे से गीत के।

क्यों बारिश का जो मौसम है ना, बारिश के मौसम में बहुत सुहाना लगता है और लगता है कि कहीं ना कहीं घूमने निकल जाए, है ना सखियो? आपका भी मन करता होगा कहीं घूमने जाने का। घूमने तो चले जाएं सखियो, पर इस मौसम में जो गाड़ी चलाना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर गिरने फिसलने का डर भी लगता है ना? अगर हम वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रख लें तो कई तरह के जोखिमों से बच जाएंगे सखियो। आज के क्रम आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, हम बात करेंगे इन्हीं सावधानियों की। सखियो, वर्षा के कारण जो यातायात है वो काफ़ी प्रभावी हो जाता है इन दिनों। सड़कें फिसलन भरी, गड्ढे भरी और हाँ वाहनों भरी हो जाती हैं। ऐसे में हम सजग रहें, सावधान रहें तो निश्चित ही सुरक्षित रह पाएंगे। बारिश में सबसे पहले गाड़ी की तकनीकी स्थिति उत्तम रखें, टायरों का प्रेशर और ग्रिपिंग जांच लें, वाइपर, हेडलाइट, टेल लाइट और ब्रेक जांच लें। और सबसे बड़ी बात सखियो याद रखने की कि बारिश के दिनों में वाहन की जो गति है उसको नियंत्रित रखें और दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाकर रखें। हल्की बारिश में हेडलाइट ऑन करके चलें। और सखियो, दो पहिया गाड़ी चला रहे हैं तो भी हमें हेडलाइट इंडिकेटर का प्रयोग ज़रूर करना है, हेलमेट पहन के रखना है, रेनकोट ज़रूर पहन के रखना है और हाँ गड्ढे वाली जगह से बचकर निकलना है। कुल मिलाकर सखियो कहूँ तो मानसिक स्थिति या मानसिक शांति बनाए रखनी है, धैर्य बनाए रखना है और हाँ मोबाइल का प्रयोग कतई नहीं करना है सखियो। हमारी सावधानी हर मौसम का मज़ा दोगुना कर देगी। याद रखिए, अगली बार जब भी काले काले बादल छाएं सखियो तो सिर्फ छाता नहीं सावधानी भी साथ लेकर निकले। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ सुनती रहें कार्यक्रम महिला सभा। फिलहाल अनुमति दीजिए, आपको बता दें कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार और अब दे अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आप अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है और कलाकार हैं सुनीति महेश्वरी। हम इनसे सुनते हैं इनके गाए भजन और गीत।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: इस समय आप है हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। चलो दीदी झूला झूलते हैं।
6: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
7: मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूँ आपके साथ जावेद खान। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना, जिसको लिया है हमने फिल्म कन्यादान से, और हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है। शंकर जयकिशन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म पेंटर बाबू से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की, कमर जलालाबादी की, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इस गाने को लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और हमारी घड़ी में बज रहे हैं 2:10। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। ये बयान जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक मामलों में सुनवाई तेज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री शाह ने कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इसे पेपर लीक के खिलाफ मील का पत्थर बताया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अमर शहीद आजाद कुटिया पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे प्रगतिशील किसानों और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 287 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 53 करोड़ रूपये के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी संवाद करेंगे। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल अब प्रदेश के अस्थायी मुख्य सचिव होंगे। वे अनुराग जैन का स्थान लेंगे। श्री अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल देर शाम इसका आदेश जारी किया था। झारखंड से आने वाले श्री बर्णवाल ने बीटेक के साथ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। बर्णवाल को स्वास्थ्य, प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़े विभिन्न विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है। प्रदेश के राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड ने 1400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। ये पदोन्नति 30 से अधिक संवर्गों में दी गई है। मंडी निरीक्षक के पद पर सबसे ज्यादा 774 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। ये पदोन्नति के आदेश कल जारी किए गए। आज देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है।

ये दिन हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया था। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। यह देश के करीब 92% क्षेत्र और 99% आबादी तक पहुंचता है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से ज्यादा देशों में भी प्रसारण करता है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा। कल विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के करीब 138 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं आज कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बाघ रेस्क्यू कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। यह टीम बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक आयोजित होने वाले हॉकी विश्व कप में खेलेगी। भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह करेंगे। भारत को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स से अपना पहला मुकाबला खेलेगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में पिछले 60 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 40 से ज्यादा जिले बारिश से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत कल आगरमालवा जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं और आमजनों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया गया। झाबुआ शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। रक्षाबंधन और पवित्र सावन माह के अवसर पर कटनी प्रधान डाकघर जबलपुर संभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष सेवाएं शुरू की हैं। और शिवपुरी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा डायरिया रोको अभियान के तहत कल विकासखंड खनियाधाना के सभी गांवों के पेयजल स्रोतों में जर्मेक्स डालकर क्लोरिनेशन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
3: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
4: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
6: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
7: ऑपोजिशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी रिमेंस।
8: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
7: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
1: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
9: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मंजिल फिल्म का एक गाना। आवाज लता मंगेशकर की है, योगेश का लिखा हुआ यह गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वह है हायर सेकेंडरी स्कूल भोरी आस्टा जिले सीहोर से लिखने वाले हैं रामबाबू परमार, महेश परमार, विक्रम मालवीय, लोकेंद्र ठाकुर, अर्जुन धनगर, अके सिंह बकोरिया, जितेंद्र पंडोले, यासीन खान, किरण परमार, रखिता मेवाड़ा, शीतल मेवाड़ा, राम सिंह दादा, संतोष दादा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं योगेश कुमार चौरसिया, श्रीमती संगीता चौरसिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम मंजिल।

अगला गाना लिया है फिल्म आशा का, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, अम्बेडकर चौक खुरई से लिखने वाले हैं राम सखी, परमानंद, सौरव, गौरव, किशोरी बोस, एल पी पुरोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित, छोटू और उनके समस्त परिवार के साथियों ने सुनना चाहा है ये गाना। सुनिए,

अगला गाना लिया है हमने लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गाने को हमने लिया है फिल्म अनपढ़ से, और राजा मेहदी अली खान ने इस गाने को लिखा है और मदन मोहन का संगीत है। अनपढ़ फिल्म के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है ग्राम भौरा आष्टा सीहोर से, लिखने वाले हैं महेश परमार, लोकेंद्र, विक्रम, राम बाबू परमार, अर्जुन, अके सिंह और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है, लिखने वाले हैं राम सिंह ठाकुर, संतोष हराया, विजन मेवाड़ा और सज्जन सिटोली। इन्होंने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से, लिखने वाले हैं गन्नू लाल रजक, आर के साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जंजीर से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, बक्सर बिहार से लिखने वाले हैं शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब ढूंग डुमराव से लिखने वाले हैं वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डुमराव से लिखने वाले हैं सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद से मुस्तफाबाद दिल्ली से लिखने वाले हैं राम बाबू दीवाना। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है, रवि का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में एक फरमाइश आई है, गौरी नगर इंदौर से लिखने वाले हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है सिंहपुर बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए फरमाइश है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म अनपढ़ से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने को पसंद किया है शिवलोक ग्रीन से, लिखने वाले हैं तुलसीराम घनश्याम, त्रिवेणी प्रसाद, राहुल सागर, राजेश पंडित, खालिद, राम स्वरूप, मिलन, निखिल और उनके बहुत सारे दोस्त। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। इसी गाने को पसंद किया है सिरोंज से, लिखने वाले हैं आमिर खान, फायजा खान, मायशा, मरियम और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 हुए हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री शाह ने कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आजाद कुटिया पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिला है। 1991 बैच के IAS अधिकारी अशोक पर्णवाल अस्थायी मुख्य सचिव होंगे। वे अनुराग जैन की जगह लेंगे। अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। प्रदेश के राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड ने 1400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। ये पदोन्नति 30 से अधिक संवर्गों में दी गई है। मंडी निरीक्षक के पद पर सबसे ज्यादा 774 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। और आज देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आइए शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। 5:33 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00। छह 6:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी 7:21 पर होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। रात 8:00 हम आपको सुनवाएंगे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं 8:15 पर। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विधानसभा समीक्षा। 8:35 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 9:30 पर भी हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। और 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्न काल के दौरान हुई रिकॉर्डिंग, कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। कृपया इसको पुनः सुन लीजिए, संसद में प्रश्न काल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे 10:00 से। आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम, जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होना है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ, तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी
1: और मैं आपकी रेडियो दोस्त चित्रा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज हम करने वाले हैं आपसे ढेर सारी बातें, जिनमें आज हम सेलिब्रेट करेंगे दो विशेष दिन। पहला दिन है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो दूसरा आज एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर विचारक और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती भी है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। साथ ही आज एक और विशेष दिवस है, तो सोचिए वो दिवस कौन सा है।
0: और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आपको पता चलेगा तो उसके बारे में सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है।
1: हाँ, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा।
0: तो श्रोताओं, हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछते हैं, तो चित्रा अब समय आ गया है उन दो प्रश्नों का।
1: बिल्कुल। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पश्चिमी तट क्या कहलाता है, उसे किस विशेष नाम से जाना जाता है।
0: और आज का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के अंत तक आप इनके जवाब ढूंढ कर रखेंगे। और फिलहाल शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चलो
3: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
4: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: दोस्तों, आज 23 जुलाई का दिन है और ये दिन भारत के इतिहास में दो बेहद महत्वपूर्ण कार्यों के साथ याद किया जाता है। एक ओर आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, तो दूसरी ओर आज महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर विचारक और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती भी है। दोनों ही अवसर हमें प्रेरणा देते हैं कि विचारों की शक्ति और संवाद की ताकत मिलकर समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
8: बिल्कुल माधवी, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई, तब के बॉम्बे स्टेशन से भारत का पहला रेडियो प्रसारण किया। दोस्तों, ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों तक सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुँचाने का रास्ता खोल दिया।
7: समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन रेडियो का अपनापन कभी नहीं बदला। रेडियो की यही सबसे बड़ी खूबी है कि ये आवाज के माध्यम से सीधे दिल तक पहुंचता है। कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, फिर भी एक अनजाना रिश्ता बन जाता है। सुबह की प्रार्थना हो, किसानों के लिए उपयोगी जानकारी हो, समाचार हो, संगीत या फिर किसी दूर गांव तक पहुंचती प्रेरणादायक बातें हो, रेडियो हर वर्ग के जीवन का हिस्सा रह जाता है।
8: यही कारण है दोस्तों कि रेडियो को सबसे भरोसेमंद संचार माध्यमों में गिना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय दूर दराज के इलाकों में या इंटरनेट की सुविधा न होने पर भी रेडियो लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा पहुंचाता रहा है। बदलते दौर में FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने इसकी पहुँच को और भी व्यापक बना दिया है।
7: और अब जब हम आज के दिन की बात कर ही रहे हैं तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद करे बिना तो ये चर्चा अधूरी ही रह जाती है।
8: हाँ माधवी, 23 जुलाई 1856 को जन्मे तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा दी। उनका प्रसिद्ध उद्घोष था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आज भी हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना जगाते हैं। तिलक केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक विशिक्षक थे, प्रभावशाली पत्रकार थे और दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने केसरी, द मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। उस समय उनकी लेखनी लोगों की आवाज बनी और समाज को जागरूक करने का माध्यम भी।
7: ये सचमुच बहुत दिलचस्प है कि एक ओर तिलक जी ने अपने विचारों से देशवासियों को जोड़ा और दूसरी ओर रेडियो ने अपनी आवाज से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। दोनों की भूमिका अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक ही था, लोगों तक सही संदेश पहुंचाना और समाज को जागरूक बनाना।
8: इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो दोस्तों, मौसम चाहे कोई भी हो, एक चीज ऐसी है जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और मेरे लिए वो एक चीज है मीठा। और मीठे में भी आइसक्रीम हो तो मजा ही मजा है।
3: बिल्कुल।
2: और आज का दिन तो इसी मीठी खुशी और इसी को खास बनाने के लिए है, क्योंकि आज का जो दिन है चित्रा, उसे मनाया जाता है नेशनल वनीला आइसक्रीम डे के नाम से।
3: अरे वाह, माधवी आइसक्रीम की बात हो और वनीला का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

0: साथियों, पूरी दुनिया में वनीला आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने फ्लेवरों में शामिल है। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बिना ज़्यादा तामझाम के भी यह हर उम्र के लोगों की पसंद बनी रहती है।
1: और तुम्हें पता है, सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई लोग वनीला को साधारण फ्लेवर समझ लेते हैं, जबकि असलियत बिल्कुल अलग है। वनीला दुनिया के सबसे जटिल प्राकृतिक स्वादों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसकी खुशबू और स्वाद को सैकड़ों प्राकृतिक सुगंधित तत्वों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया है और इसीलिए इसे इतना खास भी मानते हैं।
0: ओह, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। और साथियों, साथ में वनीला केवल आइसक्रीम तक ही सीमित नहीं है। केक, पेस्ट्री, कुकीज, चॉकलेट, मिल्क शेक और कॉफी,
1: बस करो भाई,
0: कई तरह की मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। साथियों, यही वजह है कि इसे क्लासिक फ्लेवर कहा जाता है।
1: और तुम्हें पता है, वनीला की जो कहानी है वो भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। ये स्वाद वनीला ऑर्किड नाम के एक विशेष पौधे की फलियों से प्राप्त होता है। इन फलियों को तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और मेहनत वाली होती है। पहले फलियां तोड़ी जाती है, फिर कई महीनों तक उन्हें सुखाया जाता है और विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, तब जाकर हमें ये मनमोहक वनीला की खुशबू और स्वाद कहीं मिल पाता है।
0: ओह, इसीलिए असली प्राकृतिक वनीला दुनिया के सबसे महंगे मसालों में भी गिना जाता है। केसर के बाद वनीला का नाम अक्सर सबसे मूल्यवान मसालों में लिया जाता है। एक छोटी सी फली के पीछे किसानों की महीनों की मेहनत छिपी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शायद यही कारण है कि वनीला हर दूसरे फ्लेवर के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाता है। ब्राउनी के साथ वनीला, गर्म गुलाब जामुन के साथ वनीला, फ्रूट सैलेड के साथ वनीला, या फिर ताजे आम के साथ वनीला, हर बार इसका स्वाद कुछ नया ही अनुभव कराता है।
0: अभी जैसे तुम इन सारी डिशेस का नाम ले रही हो, मेरे मुंह में अपने आप वनीला का स्वाद आ गया है।
1: ये जो मैंने अभी बोला है चित्रा, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिशेस है।
0: ओ साथियों, अगर आपने भी ये सब ट्राई नहीं किया है तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। स्पेसिफिकली गुलाब जामुन के साथ तो वनीला,
1: क्या किलर कॉम्बिनेशन है यार, मजा आ जाता है।
0: भारत में भी आइसक्रीम का अपना अलग अंदाज है। गर्मियों की छुट्टियां, परिवार के साथ शाम की सैर, दोस्तों की छोटी सी ट्रीट या फिर किसी भी खुशी का जश्न हो, तो एक स्कूप आइसक्रीम हर पल को थोड़ा और मीठा बना देती है। और ऐसे में पहली पसंद होता है वनीला।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और अब इतनी सारी हमने बातें बता ही दी है, तो एक और दिलचस्प बात मैं ये बता देती हूँ।
0: बताओ।
1: वनीला आइसक्रीम दुनिया भर के शेफ और फूड आर्टिस्ट की भी बहुत पसंदीदा चीज है, क्योंकि इसका स्वाद इतना संतुलित होता है कि ये दूसरे डेजर्ट्स का स्वाद और बढ़ा देता है, दबाता नहीं है।
0: सच कहा तुमने। कभी कभी अब सबसे खूबसूरत चीजें वही होती है जो बिल्कुल सरल होती है। वनीला आइसक्रीम भी हमें यही सिखाती है कि सादगी में भी एक अलग ही मिठास होती है।
1: बिल्कुल सही। तो आज नेशनल वनीला आइसक्रीम डे पर अपने दिल में, अपने दिन में थोड़ी सी मिठास जरूर शामिल कीजिए। परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ हंसिए, और अगर मौका मिले तो वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप लेकर बचपन की उन मीठी मीठी यादों को फिर से जी लीजिए।
0: क्योंकि जिंदगी की सबसे प्यारी यादें अक्सर छोटी छोटी खुशियों से बनती है। तो आपको और खुश कर देते हैं, सुनवाते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं युवाणी। माधवी, हम अक्सर सुनते हैं कि बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार एक छोटा सा सवाल भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है।
1: सही कहा तुमने, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है, जो कि है जिज्ञासा। जब हम क्यों पूछना शुरू कर देते हैं ना, तब नए विचार जन्म लेने लगते हैं। विज्ञान से लेकर समाज तक लगभग हर परिवर्तन की शुरुआत किसी न किसी के एक सवाल से ही हुई है।
0: साथियों, अगर सोचिए, न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए फल को देखा तो सवाल किया कि वह नीचे ही क्यों गिरा। सीवी रमन ने समुद्र का रंग नीला देखा तो प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा युवाओं से भी यही कहते थे कि प्रश्न पूछना कभी मत छोड़िए, क्योंकि प्रश्न ही सीखने का पहला कदम है।
1: और यही बात हमारी रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होती है। अगर कोई विद्यार्थी ये पूछता है कि किसी गांव में पानी की समस्या क्यों है, तो शायद वो सॉल्व हो सकती है। युवा अगर ये जानना चाहता है कि कचरे का बेहतर प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं या

0: कैसे हो सकता है, कैसे सफाई हो सकती है, तो शायद उस गांव में वाकई सफाई होने लग जाए। या कोई बच्चा अगर ये समझना चाहता है कि पेड़ काटने का असर क्या होगा, तो यहीं से समाधान की जो खोज है वो शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई बड़े आविष्कार किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी समस्याओं को देखकर हुए। यानी जिज्ञासा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, वह हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक नज़रिया भी देती है।
0: और आज के समय में जब जानकारी हमारे मोबाइल फ़ोन तक आसानी से पहुंच जाती है, तब सबसे ज़रूरी है कि सही जानकारी को हमें पहचानना होगा। किसी भी बात को बिना परखे स्वीकार करने की बजाय उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, समझना और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना उतना ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल, शायद इसी सोच को हमारे संविधान में भी महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान की भावना को विकसित करना हम सभी का कर्तव्य माना गया है हमारे संविधान में। इसका अर्थ यही है कि हम जिज्ञासु रहे, सीखते रहे और बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।
0: तो अगली बार से जब आपके मन में कोई सवाल आए तो उसे दबाइएगा मत। हो सकता है वही सवाल जो है वो किसी नई खोज, किसी नए विचार या किसी छोटे से सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बन जाए।
1: कई बार एक सवाल शांत मन में उठे एक छोटे से प्रश्न से बदलाव शुरू होता है।
0: और बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि जब तक हम सवाल पूछेंगे नहीं तब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे, और जब तक जवाब मिलेंगे नहीं हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी।
1: बिल्कुल,
0: तो इसी विचार के साथ हम आप सबको छोड़ते हैं कि आप कुछ ना कुछ सोचें और सवाल ज़रूर कीजिए, और साथ ही कार्यक्रम में भी आगे बढ़ें। और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों युववाणी में। माधवी, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे जहन में किले, महल और स्मारक आते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि देश में कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास के गवाह हैं।
1: सच कहूँ तो हम पेड़ों को सिर्फ प्रकृति का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन उनके भीतर भी समय की एक बहुत लंबी कहानी छुपी होती है, ये सोचना भूल जाते हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जिन्होंने साम्राज्यों का उथल पुथल, स्वतंत्रता आंदोलन की सारा केओस और समाज में आए बदलाव को चुपचाप देखने वाला जो संयम है, वो सब देखा सुना और अपने पास रखा भी है।
0: हाँ, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध थिम्मम्मा मरिमनु बरगद का पेड़, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में से एक है। इसकी शाखाएं इतनी दूर तक फैली है कि यह कई एकड़ भूमि को अपनी छाया में समेट लेता है। एक पेड़ होकर भी यह किसी छोटे जंगल जैसा दिखाई देता है।
1: वहीं पश्चिम बंगाल के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन में स्थित है द ग्रेट बैनियन ट्री, ये भी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। दिलचस्प बात यह है कि इसका मुख्य तना वर्षों पहले नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी हजारों जटाएं आज भी इसे जीवित रखे हुए हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन कभी कभी एक आधार के सहारे नहीं बल्कि अनेक जड़ों के सहारे भी आगे बढ़ता है।
0: कितनी अच्छी बात है। साथियों, भारत में पीपल, बरगद और नीम जैसे पेड़ों को केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था से भी जोड़ा गया है। गांवों में आज भी बरगद के नीचे चौपाल लगती है, पीपल के नीचे लोग विश्राम करते हैं और नीम को औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया जाता है। यानी ये पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि सामाजिक जीवन का भी हिस्सा है।
1: वैज्ञानिकों का मानना है कि एक परिपक्व पेड़ अपने जीवन काल में लाखों रुपए के बराबर परिवर्तन और पर्यावरण को जो हेल्प मिले उसके काफ़ी काम करता है। वह हवा को शुद्ध रखता है, तापमान को कम करता है, वर्षा के चक्र को प्रभावित करता है, मिट्टी को सुरक्षित रखता है और ऐसे

0: अनगिनत चीजें हैं जो एक पेड़ कर सकता है, पक्षियों तथा जीवों का भी घर बनता है।
1: हाँ, और यही वजह है कि आज दुनिया भर में हेरिटेज ट्री यानी धरोहर वृक्षों की पहचान की जा रही है। ऐसे पेड़ों को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि वे सिर्फ वनस्पति नहीं बल्कि किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी होते हैं।
0: ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें भी अपने आसपास के जो पुराने पेड़ हैं, उनको सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि जीवित इतिहास की तरह देखना चाहिए। हो सकता है जिस पेड़ के नीचे हम कुछ मिनट बैठते हैं, वो हमारी कई पीढ़ियों को आते जाते देख चुका हो।
1: बिल्कुल सच है, कुछ इतिहास किताबों में लिखे जाते हैं और कुछ इतिहास पेड़ों की छाल, उनकी जड़ों और उनकी छाओं में सांस लेते हैं।
0: और इसी प्यारे से और खूबसूरत के विचार के साथ अब हम समय के अगले मोड़ पर आए हैं और सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

0: तो साथियों, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। आज हमने बहुत सारी काम की जानकारियों की बातें की आपसे। हमने जाना कि आज विशेष दिन था, नेशनल वनीला डे। हम ये भी जानते हैं कि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें वनीला फ्लेवर पसंद नहीं होगा और वे आइसक्रीम का कोई और फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो हमें पत्र लिखकर आप बताइएगा ज़रूर कि आपका पसंदीदा स्वीट फ्लेवर कौन सा है। हमारा पता है, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी, मालवा हाउस, इंदौर, कार्यक्रम युववाणी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने चित्रा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऐसा मानते हैं कि ये तो कैसे ओल्ड एज लोगों का फ्लेवर है, या है ना, ये ऐसा फ्लेवर है कि इसमें कोई फन नहीं है,
0: बिल्कुल
1: बड़ा सिंपल सा फ्लेवर है। लेकिन असली में ये बिल्कुल सिंपल नहीं है।
0: हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लेवर है।
1: कॉम्प्लेक्स फ्लेवर है। और दूसरा, इतना इतना बेचारा कितना प्यारा सा फ्लेवर है कि किसी के साथ भी जुड़ के दूसरे का भी फ्लेवर इंक्रीज कर देता है। जैसे हमने बात करी गुलाब जामुन और आइसक्रीम की, तो आई थिंक गुलाब जामुन टेस्ट बेटर विद
0: आइसक्रीम, एब्सोल्यूटली
1: वनीला आइसक्रीम। तो वो खुद का तो अपना अच्छा टेस्ट रखता ही है, उसके साथ आप उसके साथ जिस चीज़ को खा रहे हो। अब बताओ, ब्राउनी आइसक्रीम कितना फेमस।

0: कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हमने पूछे गए दो प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न हमने पूछा था, भारत का पश्चिमी तट क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं मालाबार तट।
1: और जो दूसरा था वो प्रश्न ये था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका उत्तर है ग्रीनलैंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ लिए होंगे। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी,
0: और मैं चित्रा। फिर मिलने के वादे के साथ, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए जीने की राह फिल्म के गीत से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, नीरज की गीत रचना है और फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

श्रोताओं अब सुनिए मुकेश का गाया उपकार फिल्म का गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना उपकार फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
3: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
3: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
3: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
3: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
3: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
2: जी,
3: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
2: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं, और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
3: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
2: जी।
3: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
2: जी।
3: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
2: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
2: जी।
3: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन

0: पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
0: 8800-4405559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को,
5: पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
6: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
7: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहां जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
3: कहो तुम्हारा प्रसंग क्या है?
8: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
9: जी महाराज।
8: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
3: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
8: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
3: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
8: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
3: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
9: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
2: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़।

0: वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
1: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
2: आज मैं राजा बनूंगी।
3: आज मैं राजा बनूंगा।
4: आज तो मैं राजा बनूंगा।
5: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
6: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
2: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
7: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
2: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
7: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
3: हमने तो देखा है।
8: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
2: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
7: महाराज की जय हो।
9: जय हो।
7: महाराज की जय हो।
9: जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
10: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है, और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ लेकिन महाराज, न्याय सच्चाई से होता है।
11: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
0: शिला जब खोदकर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
12: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
11: चोरी।
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
11: हाँ, ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
12: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
12: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
11: झूठ।
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
12: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?

0: से चोट है वो बम्बा।
1: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि चौथी मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
1: राजा को क्रोध आ गया।
0: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
1: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
5: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जब पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिया मेरा ठंडा पानी। अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ। अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
6: अरे मशकूब भाई,
7: जी जनाब,
6: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
7: लीजिए जनाब।
6: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
7: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
6: रखो रखो।
7: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
6: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो, रखो।
7: शुक्रिया
6: शुक्रिया।
5: अमृत वाला आ गया।
8: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मशक पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
9: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
6: मशकूब भाई,
7: जी जनाब,
6: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
7: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा, आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
6: लाओ। बस बस,
7: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
6: सही कहा मशकूब भाई,
7: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
6: अभी तक तो कुछ नहीं।
7: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
6: अरे नहीं नहीं
7: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए साथ में।

0: जी
1: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
0: क्या बात करते हैं,
1: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
0: इसमें नेकी की क्या बात है?
1: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
0: ये तो मेरा फर्ज था।
1: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
0: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
1: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
0: ये तो बड़ा नेक काम है।
1: अब ये लीजिए।
0: ये किताब, ये किताब किस लिए?
1: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
0: अच्छा,
1: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
0: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
1: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
0: तौबा तौबा तौबा,
1: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
0: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
2: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
3: जनाब,
4: लाजवाब इंसान है वो।
3: क्या बात करता
4: है, क्या बहुत अच्छे इंसान।
5: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
6: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
5: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
6: पैसा लाए हो?
7: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
8: मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो?
7: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
8: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
7: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
8: बच्चे को गोद में उठाओ।
7: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम
8: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
7: मर जाए बच्चे,
8: उठाओ।
7: मर जाए हकीम साहब।
8: चलो निकलो बाहर।
5: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
9: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बादस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया? या खुदा माफी, माफी रहमत। अमर तवाल आ गया, क्या खूब रंग चमक।
0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
1: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं,
3: या खुदा माफ।
1: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लता मंगेशकर के स्वर में अब सुनिए सुगम संगीत। पहले सुनिए ये रचना।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम, रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से दिन में 12 बजे तक FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से दिन में 12 बजे विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से दिन में 12 बजे तक विविध भारती 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं रेखा सोलंकी के गाए मालवी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है ये अगली लोक रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे रेखा सोलंकी और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनेंगे शाम 7।

बजकर 20 मिनट पर कार्यक्रम में आप सुनेंगे अधिक यूरिया और अधिक डीएपी के नुकसान और संतुलित पोषण प्रबंधन विषय पर डॉक्टर अनुराधा शर्मा की भेंट वार्ता। श्रोताओं, रात 8:15 पर हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 से। चित्रगीत होंगे रात्रि 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे अभय नारायण मलिक का गाया राग रागेश्री। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम। अब कल के कार्यक्रम। भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। चिंतन होगा कल सुबह 6:30 पर। आलेख चंद्रशेखर का और वाचक स्वर राजेश जैन का। खेती की बातें में सुबह 6:35 पर जानकारी दी जाएगी। बरसात में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। श्री रामचरितमानस गान हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 6:40 पर। श्रोताओं, कल सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल हम लेकर आएंगे कल सुबह 7:35 पर। कवि गोष्ठी सुनेगा कल सुबह 8:30 पर। सुबह 9 लोक संगीत में आप सुनेंगे प्रहलाद सिंह टिपाणिया के गाए लोकगीत और कल सुबह 9:15 पर गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के स्वर में सुनेगा सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया राग अलहिया बिलावल। जिले की चिट्ठी कल सुबह 10 हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर। आइए श्रोताओं, अब आपको भोपाल केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। इस घंटे की खास खबरें होंगी कल सुबह 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और 2:58 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 12 और दिन में 2। संग्रहालय से कार्यक्रम होगा दिन में 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनेगा दिन में 1। लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 1:45 पर सुनेगा सुगम संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से सांध्यकालीन सभा का आगाज होगा कल ठीक शाम 5 युवाणी कार्यक्रम के साथ और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित होगा कल शाम 6। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेंगी फास्ट ट्रैक अदालतें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले की सराहना, बताया युवाओं के हित में मील का पत्थर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पहुंचे अलीराजपुर, बलराम कृषि महोत्सव में 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में 3 मौसमी सिस्टम सक्रिय, पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। ये बयान जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। श्री शाह ने कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इसे पेपर लीक के खिलाफ मील का पत्थर बताया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के फैसले की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस कदम से पेपर लीक माफियाओं पर प्रभावी प्रहार होगा और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता व विश्वसनीयता मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में छात्र प्रतिनिधियों को बातचीत का 4 बार प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय में खुले मन से बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना बातचीत के कोई समाधान नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता की। उन्होंने यहां पर 303 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 53.5 करोड़ रुपए के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया।
5: 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। दूध उत्पादन के लिए भी, पशुपालन तो आप करते हैं लेकिन गाय का दूध भी हमारी सरकार खरीदेगी। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे, गोपालन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। ऐसे में जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा उसको 10 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे।
4: बलराम कृषि महोत्सव के पहले डॉ यादव ने इंदौर में प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर ब्रिज की एक भुजा का लोकार्पण किया। यह ब्रिज लवकुश चौराहे पर 175 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ्लाईओवर सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर इंदौर उज्जैन मार्ग पर यातायात को सुगम बनाएगा। इंदौर पहुंचने पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय दिलाना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
4: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस में विभिन्न श्रेणी के 9662 पदों की स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7,500 पद आरक्षक के हैं। मुख्यमंत्री ने कुल 18,000 पद भरने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पुलिस में करीब 25,000 पदों पर पदोन्नति भी की गई थी। राज्य सरकार ने सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जयसी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन करने का फैसला किया है। इसके लिए करीब 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अस्पताल बनने के बाद यहां हड्डी रोग, स्त्री रोग और शिशु रोग जैसे कई विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। 1991 बैच के IAS अधिकारी अशोक बर्णवाल ने आज प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उन्हें मंत्रालय स्थित मुख्य सचिव कक्ष में कार्यभार सौंपा। अनुराग जैन को अब केंद्र सरकार ने नीति आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया है। झारखंड से आने वाले बर्णवाल को स्वास्थ्य प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़े विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने आज नाथू बरखेड़ा स्थित निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों और महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि कॉम्प्लेक्स के फेज वन का लोकार्पण जल्द किया जाएगा। इसके बाद यहां एथलेटिक्स, हॉकी और फुटबॉल की गतिविधियां शुरू होंगी। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरू पद पर एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। प्रभारी कुलगुरू प्रोफेसर विवेक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने उनका त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। अब नियमित कुलगुरु की नियुक्ति होने तक उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन को कुलगुरु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आज देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया था। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। यह देश के करीब 92% क्षेत्र और 99% आबादी तक पहुंचता है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तेजी से बढ़ रहा है और इसके करीब 1,10,00,000 उपयोगकर्ता हैं। बॉलीवुड अभिनेता रजनीश दुग्गल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के नशे से दूरी है जरूरी अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने लोगों से ड्रग्स को न कहने की अपील की है।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश दुग्गल और आज मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी युवा हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, प्लीज प्लीज प्लीज ड्रग्स को नो बोलिए। आप किसी को करते हुए देखते भी हैं तो रोकिए। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारी सेहत को अंदर ही अंदर से खत्म कर देता है, हमारी ताकत को खत्म कर देता है। सो प्लीज से नो टू ड्रग्स। इस अभियान का हिस्सा बनिए और इस देश को ड्रग फ्री करने में हमारी मदद करिए।
4: आयकर दिवस 2026 के अवसर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग ने भोपाल के PM श्री केंद्रीय विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मोना मोहंती के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यालयों के शिक्षकों ने विद्यार्थियों ने भी पौधे लगाए। श्रीमती मोहंती ने सभी से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। आयकर दिवस का मुख्य समारोह कल भोपाल स्थित नवीन आयकर भवन में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इसे जलगंगा संवर्धन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जुलाई से 4 अगस्त तक पेयजल का सम्मान और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में जल अर्पण दिवस और लोक उत्सव मनाए जा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर सहित प्रमुख जिलों के सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 मजबूत मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, जिसके लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश सिवनी में हुई, जहां 4.5 इंच से ज्यादा पानी बरसा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 29 जुलाई को संस्कृति विभाग द्वारा विशेष सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय स्थित अधीनस्थ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विविध गतिविधियां व संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। आगरमालवा के सुसनेर नगर परिषद में विशेष पंजीयन शिविर लगाकर प्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों को कार्ड वितरित किए गए। नीमच के पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा में कक्षा 6 की चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। खंडवा में सद्भावना मंच द्वारा गायक मुकेश की जयंती के अवसर पर विशेष गीतांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धार जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक क्रमांक 1 और 2 में एक दिवसीय करियर काउंसिलिंग आयोजित की गई और नर्मदापुरम जिले के केसला, पिपरिया, सुहागपुर और बनखेड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी इंदौर है। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहन और के स्मिता की राम राम। भाई बहन, जब भी हम में से कोई या हमारा घर का कोई मनक नामे से कदी बीमार पड़ी जावे तो हमारा जो पैसा है उनकी भी जरूरत पड़े। और भाई, जरूरी नहीं है कि उन्हीं वक्त पे हमारा पास जितना पैसा लगी रहा है उतना पैसा हो सही। कई बार ऐसो मौको ही जाए कि भाई उधार लेनो पड़ेगो, या किससे उधार लेवांगा, कैसे हम इलाज करावांगा। कई बार ऐसी अनहोनी हुई जाए ऐसी वक्त पे कि हमारा पास पैसा नहीं होए और हमारा इंसान की जान तक चली जाए। तो भाई बहनों, और इतनी सारी ये परेशानी ना जो आए उका से बचना का सारू। और हमारा जो भाई बहनों और है जो कि गरीबी रेखा का नीचे जो अभी रहवे है वी, और साथ ही जो 70 साल का हुई है वी सब, उनकी आय कहीं भी होए तो भी चले, उन सब का सारू हमारा जो हमारी सरकार है उनने आयुष्मान भारत योजना चली रखी है। तो आज अपन बात करा कि भाई ये आयुष्मान भारत योजना है कहीं और कैसे यो काम कर या काम करे है। तो भाई बहन, और देखो, बड़ी आसानी से हम समझी ला कि जो आयुष्मान भारत योजना है वह हमारा सगला वी भाई बहन और जो कि ग्रामीण या फिर शहर सभी क्षेत्र में कहीं भी रहता होए पर भी का आर्थिक रूप से कमजोर होए, जिका में जैसे कि काम काज जो करने वाला रोड पे है नहीं, जो ठेला लगाए उनसे, जो भी गरीबी रेखा का नीचे आए जिनकी आय कम होए आर्थिक रूप से कमजोर होए, वी सभी इन्हीं योजना का पात्र रहे है। और उनके सारू इका इन्हीं योजना में 5 लाख रुपया का इलाज का सारू एक कार्ड बने जिके आयुष्मान कार्ड बोले। और इना कार्ड को लाभ यो रेवे कि जद हम अस्पताल में भर्ती होवा तो सर्जरी दवा है नहीं, जो भी उसमें अपन सर्जरी करावा ऑपरेशन करावा वो दवा का पैसा जांच का पैसा ये पूरो खर्च 5 लाख रुपया तक को खर्च हमारो सरकार उठावे है। और कदी हम जैसे कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाली बात हुई गई, अब 70 बरस का कोई जो बुजुर्ग ना रहे वे चाहे उनकी आय को कोई मतलब नहीं है, उनकी कहीं भी आय होए सगला 70 बरस का और 70 बरस से ज़्यादा वाला जो बुजुर्ग है उनका सारू आयुष्मान योजना कार्ड बने हैं। वी कोई भी होए वी बने सके, इका में आय निर्भर नहीं करे कि वी गरीबी जो होना चाहिए यो भी जरूरी नहीं है। तो यह सारी जो हमारो इलाज है यह पूरा भी एक सूचीबद्ध अस्पताल रहे, निजी अस्पताल, ऐसो भी नहीं कि भाई हम सरकारी अस्पताल में कर ही सका या छोटा सा कोई अस्पताल में ही या फिर कोई एक आदमी, नरा सारा ऐसा अस्पताल ना है जिका जिनके की सूचीबद्ध कर दियो गयो है। उन पे तुम देखोगा जाइके कि वहाँ सामने लिखियो रहे कि आयुष्मान योजना जो है बस एक कार्ड कदी है तुम्हारा पकड़ है तो तुम जाइके बोलो तो तुम्हारे बिना पैसा के 5 लाख रुपया तक को इलाज तुम्हारा बिना पैसा के होएगो। और तो और बहन भाई बहनों, देखो 5 लाख को इलाज जो होए उका में भी ऐसो नहीं है कि सीधा हम बस जाई के और भर्ती होएगा उका बादे जो है, इका में अस्पताल में भर्ती होना का 3 दंड पहला से जो जांच हुई रही है उका जो जांच हुई है वहाँ से लिखे तो वहाँ से जब अस्पताल से छुट्टी होए उका 15 दंड बाद तक की दवाई को खर्चो सगलो शामिल रहे है नी। और आयुष्मान कार्ड जो है बस हमारे आयुष्मान कार्ड बनवानो है उका सारू हमारे उको पंजीकरण करवानो है। और जब हमारो कार्ड बनी जाए तो हम कोई भी अस्पताल निजी अस्पताल में जाई के हमारो कोई भी इलाज कर ही सका। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जब हमने यो कार्ड बनवायो है उका पहला से भी कदी हमारे कोई बीमारी है तो उन्हीं बीमारी के भी इना कार्ड में जैसे ज बने उका पहला दंड से ज उन्हीं बीमारी को भी इलाज तम कर ही सको है। ऐसो नहीं कि अब तम भाई हमारी बीमारी पहला की थी तो यो कार्ड बनी गयो तो इको इलाज नहीं इका में होएगो, वो भी हुई सके। और वहाँ जब हम इलाज कराने जावा तो हमारे कोई पैसा नहीं लगे, बिना पैसा के बस हमारे आयुष्मान कार्ड दिखाना पड़े और अच्छा से अच्छा अस्पताल, अच्छा से अच्छा डॉक्टर हमारो इलाज करे है। तो भाई बहनों समझी, यानी आयुष्मान भारत योजना कई है और कैसे यह काम करे है, अपन आगे बातचीत और भी करांगा। अभी सुनाई ई संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अपनो खेती गृहस्थी कार्यक्रम होए और हम मनोरंजन नहीं करा, लोकगीत नहीं सुना तो अधूरा सो लगे। तो क्यों नहीं अपना कार्यक्रम के आनंददायक बनावा और सुना स्वाति उखले को गायो यो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बहनों और नरी सारी जानकारी ना ऐसी रहे कि जो हम जिका कमी से कई बार गलती करी जावा और उका से हमारी हानि होए है। ऐसी आज एक वार्ता सुना जिक में अधिक यूरिया और अधिक डीएपी नुकसान और उको संतुलित पोषण प्रबंधन इका बारे में हम जानकारी लेवांगा डॉक्टर अनुराधा शर्मा से। तो चलो सुना ये वार्ता।
3: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करांगा अधिक यूरिया ना अधिक डीएपी का उपयोग का कारण होने वाला नुकसान न उको संतुलित पोषण प्रबंधन। अभी हमारा किसान भाई बहनों को ये माननु छे कि वो जितनी ज़्यादा यूरिया न जितना ज़्यादा डीएपी अपनी खेत में अपनी फसल में नाखेगा उतनी ज़्यादा उनका अधिक पैदावार मिलेगा। लेकिन किसान भाई बहनों ने हम आपका बताना चाहिए राज कि कृषि वैज्ञानिक अब ये बतेराज कि पौधा का भोजन भी संतुलित मात्रा में होना चाहिए। जैसा अपन देखा है कि कोई भी मनुख या कोई भी मनुष्य केवल दाल चावल खाने न स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, वसोज हमारी फसल न भी केवल यूरिया या डीएपी का सहारे अच्छी उपज नहीं दे सकती हैं। यूरिया अपना पौधा का नाइट्रोजन देज न नाइट्रोजन पत्ती न की वृद्धि हरियाली न प्रारंभिक विकास का लेना आवश्यक है। वांश डीएपी की बात करा तो फास्फोरस एका में कुछ मात्रा में रज न एका साथ ही नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराड़ज। फास्फोरस जड़ का विकास न का साथ साथ फूल बढ़ना न दाना भरना की महत्वपूर्ण भूमिका में काम करज। पर अभी जी समस्या न चली रही या समस्या किसान भाई बहन का साथ हुई रही वो ये है कि किसान आवश्यकता से अधिक यूरिया न अधिक डीएपी को उपयोग अपना खेत नमा करना लगी गाज। एकासी अधिक यूरिया डालने से पौधा शुरुआत में तो खूब अच्छा हरा भरा देखाज, पर ओकासी किसान भाई बहन का लगज कि उनकी फसल बहुत अच्छी हुई रही उनकी उपज भी अच्छी मिलग। पर असो नहीं है, ये अत्यधिक जी उपयोग छे नी ओकासी कोमल बढ़वाड़ तो अच्छी हुई जाज पर बाद में अधिकता समस्या खड़ी करी सकज। अधिक यूरिया पौधा न की जड़ न का कमजोर कर देज न पौधा तेज हवा में वर्षा की स्थिति में गिर न पड़ने की आशंका बढ़ी जाए। धान न मक्का जैसी फसल न एक लॉगिंग कज न जमा फसल न पड़ी जाए तो उनकी कटाई कठिन हुई जाए, ऐसी स्थिति में उत्पादन घटी जाए। अधिक नाइट्रोजन का कारण रस चूसने वाला कीड़ा इल्ली न रोग न को भी अधिक तेजी से फैलाव होज। कोमल पत्ती न पर कीट न को प्रकोप ज्यादा होज। कोमल पत्ती न कीट न का आकर्षित करज एका कारण परिणाम स्वरूप किसान भाई बहन का बार बार कीटनाशक न को छिड़काव करना पड़ज न एकासी खेती की लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ी जाए। यूरिया की बहुत अधिक मात्रा से पौधा पोषक तत्व न को संतुलन खोई देज ओका में जिंक सल्फर आयरन न बोरान जैसा सूक्ष्म पोषक तत्व न की कमी देखाने लगी जाए। एकासी पत्ती न पीली पड़ी सकज। कभी कभी फसल में दाना ठीक से नहीं भराता ही जेकासी उपज की गुणवत्ता प्रभावित हुई जाए। किसान भाई बहन का सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की आवश्यकता छे कि पौधा यूरिया की पूरी मात्रा को उपयोग नहीं कर पाता है। यदि यूरिया गलत समय पर या अनुचित तरीका से ना खांगा तो को बहुत बड़ो भाग अमोनिया गैस का रूप में उड़ीने चली जाएगा या वर्षा का पानी का साथ वही न बाहर निकल जाएगा या अपना पानी का जी अपन कमाने की जमीन का अंदर को पानी छे ओखा प्रदूषित कर देगा। तो एकासी किसान का पैसा भी व्यर्थ जाए राज न पर्यावरण भी दूषित हुई रोज। एकासी कृषि विशेषज्ञ किसान भाई बहन का यूरिया को उपयोग हमेशा मृदा परीक्षण न अनुशंसित मात्रा का हिसाब से सही समय पर उपयोग करने की सलाह देज। वसोज डीएपी भी एक महत्वपूर्ण उर्वरक छे एका में 46% तक फास्फोरस न 18% तक नाइट्रोजन रज। फास्फोरस पौधा की जड़ का विकास का साथ साथ ऊर्जा स्थानांतरण फूल आवना की स्थिति दाना बढ़ना की महत्वपूर्ण भूमिका निभावज। लेकिन एको मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितो डीएपी ना खांगा उतो उत्पादन बढ़ी जाएगा। हमारा किसान भाई बहन सोचा कि डीएपी को ज्यादा उपयोग होगा तो ओकासी उनको फसल मजबूत हुई जाएगा। पर विज्ञान का अध्ययन से मालूम पड़ेल छे कि पौधा फास्फोरस की केवल सीमित मात्रा ज उपयोग करी सकज। अतिरिक्त फास्फोरस जी छे मिट्टी में जाइना जमा हुई जाज न को लाभ फसल को नहीं मिलते हैं। अधिक डीएपी का उपयोग सी दुष्प्रभाव ई हुई रहा कि मिट्टी में जस्ता जे अपन कमाए ने जिंक ओकी उपलब्धता कम हुई सकज। जिंक की कमी का कारण ओका लक्षण जी छे वो पौधा पर देखाने लगी जाज। सोयाबीन हुआ मक्का हुई जैसी खरीफ की फसल न पौधा की बढ़वार रुकी जाज न कभी कभी नई पत्ती न जी छे वो छोटी रही जाज। वहां फॉस्फोरस की अधिकता का कारण लोहा या आयरन भी सूक्ष्म पोषक तत्व का रूप में उको भी संतुलन प्रभावित हुई जाए। ऐसा में किसान का लगे कि फसल में उर्वरक की कमी छे तो वो अरु ओका ऊपर खाद जा नाखी देज। जबकि वास्तविक समस्या पोषक तत्व न की कमी नहीं है, पोषक तत्व न को असंतुलन छे। न ई बात हमारा किसान भाई बहन समझी नहीं पाई रहे हैं। लगातार पिछला बहुत सारा साल नसी केवल यूरिया न डीएपी पर आधारित हमारी हुई गई खेती, क्योंकि किसान भाई बहन न यूरिया न डीएपी को तो जमीन न उपयोग करियो तो बाकी जी सूक्ष्म पोषक तत्व था वो की कमी जमीन में रही गई। एका कारण प्राकृतिक संतुलन में बिगड़ना लगी गोज। एका कारण मिट्टी में जैविक कार्बन कम हुई रोज, लाभदायक सूक्ष्म जीव न की संख्या घटी रही न मिट्टी की संरचना भी कमजोर हुई रही। ऐसा में मिट्टी में पानी का रोकना की क्षमता भी कम हुई जाज, जेका सीखी सूखो या अधिक वर्षा की स्थिति बनज न फसल न पो एको प्रतिकूल प्रभाव पड़ज। न जेका सी किसान भाई बहन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई राज असंतुलन उर्वरक न को प्रयोग या असंतुलित मात्राओं को उपयोग ओकासी उत्पादन की लागत बढ़ी रही, खेती एवं महंगी होती जा रही। किसान भाई बहन खूब सारो खाद खरीदी राज, खूब सारो खाद नाखी राज, पर उना अनुपात में उनका उत्पादन नहीं मिलते है। पर यदि किसान भाई बहन न मिट्टी को परीक्षण कराड़ी न सही उर्वरक प्रबंधन करी लियो तो उनका इन्हीं सब समस्या न से निजात मिली सकेज। मिट्टी की जांच से ई पतो चली जाए कि खेत में किना पोषक तत्व की कमी छे न के की पर्याप्त मात्रा पहले से मिट्टी में उपलब्ध छे। एक आधार पर उर्वरक न को उपयोग अधिक प्रभावी न किफायती हुई जाए। न दूसरी बात जी किसान भाई बहन का सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता छे वो ई छे कि नाइट्रोजन न फॉस्फोरस का साथ या नाइट्रोजन फॉस्फोरस न पोटाश का साथ सल्फर जिंक बोरान न दूसरा सभी सूक्ष्म पोषक तत्व न को भी संतुलित उपयोग खेती में बहुत आवश्यक छे। खेत में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद को उपयोग भी अपनी खेती का अच्छी करी सकज। जैविक खाद मिट्टी की संरचना का सुधारज, लाभदायक सूक्ष्म जीव न का बढ़ाई देज न पोषक तत्व न की उपलब्धता का भी बेहतर करी देज। साथ साथ किसान भाई बहन न का दलहनी फसल न में राइजोबियम या फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु जैसा जैव उर्वरक न को उपयोग करने की सलाह भी हमारा जानकार भाई देज। यदि जैव उर्वरक न को उपयोग कर लेगा तो रासायनिक उर्वरक न की आवश्यकता बहुत हद तक कम हुई सकज। जब रसायन न को ज्यादा उपयोग नहीं होना को तो मिट्टी की उर्वरता अच्छी बनेल रहेगा। नीम लेपित यूरिया को नाम भी हमारा किसान भाई बहन न सुनी राखी होगा। नीम लेपित यूरिया से नाइट्रोजन धीरे धीरे हमारा पौधा न का उपलब्ध होज। एकासी पौधा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन को उपयोग नहीं करता है न उर्वरक की बर्बादी नहीं होती है। न ई नीम लेपित यूरिया में जो नाइट्रोजन छे वो पर्यावरण का भी कम नुकसान पहुंचावज, क्योंकि वो धीरे धीरे ओका मसी निकली रोज। हमारा किसान भाई बहन कभी भी यूरिया की पूरी मात्रा एक साथ खेत में नहीं डालता है। उनका फसल न की आवश्यकता का हिसाब से अनुशंसित चरण न विभाजन करी न वो देज। एकासी पौधा आवश्यकता का अनुसार पोषण ले लेज न नाइट्रोजन को नुकसान कम होज। तो इस सलाह डीएपी का उपयोग कर लेना भी अनुशंसित छे कि ओकी उत्तीज मात्रा उपयोग करा जितना कि अपनी मृदा परीक्षण का बाद हमारा जानकार भाई बहन न आपका दीज। यदि मिट्टी परीक्षण में फॉस्फोरस पहले से पर्याप्त मात्रा में आपका खेत में हो तो अनावश्यक डीएपी का उपयोग से हमारा किसान भाई बहन का बचना चाहिए। खरीफ का मौसम में तो ये भी ध्यान रखना की आवश्यकता छे कि उर्वरक न को उपयोग मौसम का देखी न करा। कभी मौसम की ही चेतावनी छे कि तेज बारिश होने वाली छे तो ऐसी स्थिति में उर्वरक डालने से हमारा किसान भाई बहन का बचना चाहिए, क्योंकि वर्षा का साथ ये पोषक तत्व सब वही न बाहर चली जाएगा। एकासी आर्थिक नुकसान हुई जाएगा न जल स्रोत भी प्रदूषित हुई जाएगा। तो किसान भाई बहन ई समझने की आवश्यकता छे कि बिना मृदा परीक्षण का अधिक मात्रा में यूरिया या डीएपी को उपयोग नहीं करा। केवल नाइट्रोजन न फॉस्फोरस का ऊपर निर्भर नहीं रहे, पोटाश सल्फर या दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में उपयोग करा। खेत में जैविक पदार्थ न की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता छे लंबा समय तक जैसी कि उपजाऊ अपने खेत बनेल रहेगा। उर्वरक न को उपयोग सही समय पर सही मात्रा में सही विधि से करनु भी बहुत आवश्यक छे। न कभी भी खेत में पोषक तत्व न की कमी का लक्षण देख ही रहा हो तो तुरंत खाद का ऊपर नहीं जानू है, पहला का उचित कारण जानू ओका बाद उचित उपाय अपनाणू ज। तो किसान भाई बहनों ने अधिक खाद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही खाद की, सही मात्रा में खाद की, सही समय पर खाद की, न सही विधि सी खाद देना की आवश्यकता छे। यदि आपने ये सब सफल चीज न अपनाई लियो तो आप सफल किसान छे, न इज एक अच्छी खेती की पहचान छे। बहुत बहुत धन्यवाद
2: भाई बहनों। हमने जानियो अधिक यूरिया और अधिक डीएपी के कई नुकसान रहे और संतुलित पोषण प्रबंधन कैसे करनो। अब इका साथ अपन अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावा और अपने इंतजार है कि भाई जब तक कि मनोरंजन नहीं होए, जब तक मजो नहीं आए, या बात हमने पहले ज करी ली, तो मनोरंजन करता चला और सुना सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और हमारी कार्यक्रम को एक यो भी पढ़ाओ रेवे कि हमारे समय जो है आज कई भाव रिया अनाज मंडी का ये तुम्हारे कदी पतो चले।

जाए तो तम कल का सारू बिल्कुल तैयार रहो कि भाई हमारे कौन सी चीज बेचनी है, कहीं खरीदनो है या कल मंडी जानो है कि नहीं जानो है। तो बस तुम्हारो इंतजार हुई हो खत्म। अब आज हमारा पास भाव गया है कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण इंदौर से। तो अपन जानीला आज का भाव कहीं रिया। आज की तुवर की आवक रही 5 क्विंटल और भाव रियो 6,500 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का की आवक रही 14 क्विंटल और भाव रियो 2,026 रुपया से 2,073 रुपया प्रति क्विंटल। मिर्ची की आवक रही 51 क्विंटल और भाव रियो 13,700 रुपया से 14,200 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग की आवक रही 44 क्विंटल और भाव रियो 4,000 रुपया से 6,895 रुपया प्रति क्विंटल। तिल्ली की आवक रही 4 क्विंटल और भाव रियो 10,490 रुपया से 10,750 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन की आवक रही 644 क्विंटल और भाव रियो 4,600 रुपया से 7,255 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं की आवक रही 1,204 क्विंटल और भाव रियो 2,451 रुपया से 2,924 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना की आवक रही 2,130 क्विंटल और भाव रियो 5,700 रुपया से 10,000 रुपया प्रति क्विंटल। राजमा की आवक रही 3 क्विंटल और भाव रियो 7,150 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों की आवक रही 4 क्विंटल और भाव रियो 7,495 रुपया से 7,930 रुपया प्रति क्विंटल। चना की आवक रही 166 क्विंटल और भाव रियो 4,200 रुपया से 8,495 रुपया प्रति क्विंटल। तो भाई बहनों ये तो आज का भाव था जो हमारे कृषि उपज मंडी समिति संयोगिता गंज प्रांगण से प्राप्त हुआ था। तो अब इकास आगे अपन अपना कार्यक्रम के बढ़ावा और अब जो मौसम मंडी का भाव ही गया है तो देखो भाई बहनों जद अपन मौसम है वो अपने बार बार बदली रियो है और हम जो है मौसम पे निर्भर करा हाँ। तो हमारे ख्याल रखनो है कि कभी ज़्यादा पानी पड़े तो हमारा खेत ना में पानी को भराव नहीं होए, यो ख्याल रखनो है क्योंकि हमारी फसल जो हमने बोई है वह गलने की संभावना उका से बढ़ी जाए है। अभी का साथ अपन एक गीत और सुनने को मन हुई रियो है। चलो एक लोकगीत अपन और सुना जी के गायो है मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री ने।

भाई बहनों, और अपन ने ये लोग गीत सुनियो जी के गाया तो मनीषा हरिवल्लभ अन शास्त्री ने। अब इका साथे ज अपन कल का कार्यक्रम तय करीला चलता चलता। तो कल अपन खेती की बात में सुनांगा, बरसात में पशु नाक की देखभाल कैसे करनी, वाचन रेवेगो मनीषा शर्मा को, और खेती गृहस्थी में बातचीत करांगा पेंशन योजना पे। इका साथे ज अब हमारे घड़ी भी इशारों करी रही है कि तमसे अनुमति लेने की बखत आई गई है, तो हमारे दो अनुमति राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती गृहस्थी। यह आकाशवाणी इंदौर है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और DGA से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा से सुदृढ़ होते भारत यूरोप संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
5: अम्बेसडर दयाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: मेरा पहला सवाल ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में आज से रोमानिया की दो दिन की यात्रा पर है। तीन दशकों से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की बुखारेस्ट की पहली यात्रा का क्या महत्व है?
6: जी, जैसा आपने खुद कहा कि तीन दशक गुजर चुके हैं कि भारत के कोई राष्ट्रपति रोमानिया के दौरे पे जाए। पिछला दौरा हुआ था 1994 में, जब प्रेसिडेंट पंडित शंकर दयाल शर्मा जी वहां पर एक स्टेट विजिट पे गए थे, और इतना अच्छा गुजर गया है तो अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका वहां जाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों देशों की जो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक आउटरीच है उसमें हमारा सम्मेलन हो रहा है। देखिए, भारत की आउटरीच सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रपति जी मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया के दौरे पे भी गए। इसके अलावा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक और सेक्टरल कोऑपरेशन। इससे जो भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ जो संबंध है इंडिया ईयू फ्रेट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इनमें बहुत बढ़ाव होगा, इसको बहुत ज्यादा उससे अच्छे एक संस्करण मिलेंगे। तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को एड्रेस करेंगे। क्या मतलब कि कल्चरल टाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे विचार में ये जो कल्चरल टाइज को बढ़ावा मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण।
5: जी, अभी आपने जैसा कहा अम्बेसडर दयाल कि अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू इंडिया रोमानिया बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, तो दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं?
6: मेरे विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं कोऑपरेशन के लिए वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, तीसरा डिफेंस, और चौथा रिन्यूएबल एनर्जी और साइंस। देखिए, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत जो है उसने काफी अचीवमेंट हासिल किए हैं, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जो रोमानिया में हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं वो हमें ऐसी एक स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे साबित हो।
5: जी,
6: इसके अलावा जैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, देखिए इस क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाने की बहुत संभावना है। इसके अलावा डिफेंस में देखिए, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, एक्सपर्ट एक्सचेंजेस, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बहुत पूर्ण रूप को हम समझते हैं और उस पर बहुत हम एम्फेसिस देते हैं।
5: जी, रोमानिया एक प्रमुख रीजनल टेक और आईटी आउटसोर्सिंग हब है, ये कम लागत वाला एक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है और ईयू में कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक भी है। तो अगर हम इन तीनों क्षेत्रों को देखें इससे भारतीय व्यवसायों को कैसे फायदा हो सकता है?
6: देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे की तरह साबित होता है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में, और एक बहुत एडवांस्ड हब जो टेक इनोवेशन के क्षेत्र में, और पार्टनर हमारे लिए एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, इन सब क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें इनकी अहमियत बहुत है। अब जैसे रोमानिया में कुछ प्रोडक्शन बेसिस लगाकर जो भारत की फर्म्स हैं उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो हाई टैरिफ्स हैं वो हम उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो रोमानिया है वो 16% कॉर्पोरेट टैक्स हमको देता है, बड़ा कंपेटिटिव है, और जीरो टैक्स देता है री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स पे। अब जहां तक टैक्स सेक्टर की बात है, देखिए रोमेनिया में जो टैक्स सेक्टर है वो भारत की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, स्मार्ट सिटीज बनाने में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और रोमेनिया के पास एक अच्छी वर्कफोर्स है, स्किल्ड कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वर्कफोर्स है जो हमारी टेक फर्म्स के साथ कोऑपरेट करके दोनों का फायदा कर सकते हैं। अब आपने बात की एग्रीकल्चरल फूड टेक्नोलॉजी टाइप की, देखिए रोमेनिया जो है वो एक बहुत स्पेशलिस्ट है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में, एग्री इंजीनियरिंग में और फूड प्रोसेसिंग जो की टेक्नोलॉजीज है, तो इन सब से भारत को फायदा होता है कि हम अपनी भी जो कैपेसिटी है बढ़ा सकते हैं। सप्लाई चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बायलैटरल ट्रेड है इसको रोमेनिया के सरप्लस प्रोडक्शन से फायदा उठाते हुए, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, इन सब में मिलके हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉरिडोर बना सकते हैं।
5: जी, रोमेनिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन हब भी है और पश्चिमी यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक अहम ट्रांसिट प्वाइंट है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी एक जरूरी पहलू है, तो ऐसे में यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और व्यापार और निवेश के नए मौके बनाने की कोशिश कर रहे भारतीय बिजनेसेस के लिए बुखारेस्ट का क्या महत्व है?
6: जो रोमेनिया है वो एक स्ट्रेटेजिक गेटवे भारत की बिजनेसेस के लिए है। जो यूरोप में कंज्यूमर्स की संख्या है वो 450 मिलियन से ज्यादा है, तो अगर रोमेनिया के थ्रू हमको एंट्री मिलती है तो हमारा बहुत फायदा है। देखिए रोमेनिया के पास जो ब्लैक सी में सबसे बड़ा पोर्ट
5: जी,
6: उसके अलावा जो रोमेनिया के पास लो कॉस्ट फ्रेट इनलैंड कॉरिडोर है डैन्यूब रिवर की वजह से, डैन्यूब रिवर से जो सामान है वो जल्दी पहुंच सकता है सेंट्रल यूरोप और साथ ही साथ कम दाम में, इसके इसी वजह से जो रोमेनिया के पोर्ट है ये नॉर्थ यूरोपियन पोर्ट्स के जो क्राउडेड है उसमें चार्जेस भी ज्यादा है, शिप्स की संख्या ज्यादा है, इस वजह से ये जो रोमेनिया का पोर्ट है ये हमको एक कॉस्ट और टैलेंट एडवांटेज देता है। और साथ ही साथ देखिए जो मल्टीलिंगुअल आईटी और इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है रोमेनिया के पास, उससे हमारी कंपनीज को बहुत सहायता मिलती
5: है। रोमेनिया यूरोपीय संघ का एक सदस्य है और भारत और ईयू ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जो एक समझौता हो चुका है हमारा, तो इस भारत ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को और मजबूत करने में रोमेनिया की क्या भूमिका हो सकती है, कितनी अहम भूमिका रहेगी?
6: मैं तो ये कहूंगा कि रोमेनिया एक ऑपरेशनल कैटलिस्ट का काम कर सकता है
5: जी,
6: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के संदर्भ में, क्योंकि रोमेनिया की जो पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल पोजिशनिंग है ब्लैक सी पे, ये बहुत हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकती है जो ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट है उसको एक्सेस करने के लिए, तो इस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के हमारी कंपनीज के लिए रोमेनिया हमारी सहायता कर सकता है लोकलाइज्ड प्रोडक्शन बढ़ाने में जो यूरोपियन सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो सकता है। तो मेरे विचार में ये जो बुखारेस्ट को हम उसके साथ जो हम कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम ये सोचते हैं कि बुखारेस्ट रोमेनिया हमारी सहायता कर सकता है इंडस्ट्रियल अलाइनमेंट में और रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन में सम की सेक्टर्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इन सब में जो रोमेनिया के पास एक स्किल बेस्ड लेबर पार्टनरशिप वो हमारे साथ काम करके जो वहां के हम लोगों को इस्तेमाल करके वहां के स्किल्ड प्रोफेशनल को इस्तेमाल करके अपने जो कंपनीज हैं उनके बेसिस वहां लगा के बहुत ये जो रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकते।
5: भारत और रोमेनिया के जो संबंधों की बात हो रही है तो 3 T's की बात हो रही है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। हमने ट्रेड की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, राष्ट्रपति मुर्मू के रोमानिया यात्रा दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर को कैसे बढ़ावा दे सकती है?
6: राष्ट्रपति मुर्मू जी की जो ये विजिट है रोमानिया की, ये टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि ये पीपल टू पीपल रिलेशंस है वो इसकी वजह से बहुत प्रोत्साहित हो सकती है। देखिए कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स होंगी, इससे कुछ जैसे वीजा रिस्ट्रिक्शंस है वो ईज होते हैं, तो मेरे विचार में ये जो इंटरकनेक्शन है हमारा एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं उनको समझने के लिए, इसकी वजह से ये पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे और टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
5: रोमानिया ने मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ मिलकर पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना मजबूत समर्थन दिया था। वैश्विक स्तर पर नई दिल्ली के लिए ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो समर्थन है कितना महत्वपूर्ण है?
6: भारत के लिए टेररिज्म से लड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये तीनों कंट्रीज रोमानिया, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया का जो हमको डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और तीनों ने जो पहलगाम टेरर अटैक था इसमें उन्होंने भारत के साथ सॉलिडारिटी दिखाई थी और स्पष्ट तौर पर हमारे साथ वो खड़े थे। तो इस तरह से जो ये ईस्ट यूरोप की इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके साथ अगर हम काम करते हैं तो जो टेरर के सपोर्टर्स हैं उनको हम अलग थलग करने में और एक यूरोपियन बैकिंग को प्राप्त करने में एंटी टेररिज्म जो हमारी लड़ाई है उसके संबंध में बहुत महत्व रखते हैं। तो मेरे विचार में ये तीनों कंट्रीज का सपोर्ट भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल वॉइस बने टेररिज्म के खिलाफ।
5: मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में जब ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन्स में रुकावटें आ रही हैं, आप मौजूदा पार्टनर्स के साथ संबंध बढ़ाने और नए पार्टनरशिप बनाने पर नई दिल्ली का जो फोकस है उसे कैसे देखते हैं?
6: न्यू दिल्ली का जो फोकस है इन सब संबंधों में वो ऐसा है कि हम जो पुरानी पार्टनरशिप्स हैं, अलायंसेस, उनको हम और तंदुरुस्त करना चाहते हैं और न्यू पार्टनरशिप भी बनाना चाहते हैं। अब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं क्वाड के साथ जो कोऑपरेशन है वो बढ़े, और जैसे एनहांस कर रहे हैं मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, तो ये दिखाता है कि हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स हैं उनको तंदुरुस्त करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ न्यू पार्टनरशिप भी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मसलन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो न्यूजीलैंड का दौरा हुआ जी। या उन्होंने जो विजिट किए जीसीसी कंट्रीज में, वहां पर कुछ हमने ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं और कुछ ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिससे कुछ नए दिशाओं में काम करने की संभावना पैदा हो रही है।
5: मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के संबंधों को और सुदृढ़ करने में राष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा कितनी अहम है?
6: ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक संदेश देती है कि भारत ईस्टर्न और साउथ ईस्ट यूरोप को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, उनके साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो संदेश जा रहा है कि हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में, और हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं ये और तंदुरुस्त होती जाएं। तो ये सब जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इस विजिट से पे अगर हम जोर दें, इस पे हम ठीक से स्टडी करें और इस पे फॉलो अप करें। देखिए प्रेसिडेंट ने तो दरवाजे खोले, अब हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके लिए काम करने की जरूरत है कि किस तरह से जो ये नए दरवाजे खोल रहे हैं उनका उपयोग करें और रिलेशनशिप को और बढ़ाए।
5: राष्ट्रपति मुर्मू की तीनों देशों की यात्रा से यूरोप और अगर हम व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें क्या संदेश आता है?
6: हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में, और हमने बार बार ये दिखाया है कि जब कोई भी देश संकट में आता है तो हम आगे बढ़ के उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। एक आध महीने पहले वेनेजुएला में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, तो इतनी दूर एक स्टेट कंट्री को हमने जल्दी से जल्दी सहायता भेजी। तो संदेश ये जाता है कि वी आर अ फ्रेंड इन नीड, जब कोई संकट का सामना कर रहा हो तो हम ऐसे दोस्त हैं कि हम उसकी सहायता करते हैं। तो ये जो दौरा है ये भी संदेश ये देता है कि भारत एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है सब देशों के साथ ताकि हम साथ में मिलकर काम कर सकें, अपना ऑलराउंड कोऑपरेशन बढ़ा सकें, ट्रेड का एक्सपेंशन कर सकें और रिश्तों को और मजबूत कर सकें।
5: अम्बेसडर प्रभु दयाल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद। आप
4: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा से सुदृढ़ होते भारत यूरोप संबंधों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभुदयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
2: अभी
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत ललकार फिल्म से है, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द आनंद बख्शी के।

खानदान जी हां श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श दयालपुरी की रचना है और खयाम का संगीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की।

0: और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से

0: निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जन

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं चित्रगीत कार्यक्रम और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साथ में है लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है धरती। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना छलिया फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मयंक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आपकी फरमाइशी पत्रों का सिलसिला और सुनवाते हैं पहला गीत, जो कि है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। लिखने वाले हमारे श्रोता बढ़वा मध्य प्रदेश से आयांश रावल, पुष्पेंद्र रावल, इंदिरा, निशा निहारिका और सोनू मोनू और समस्त

रावल परिवार। अगले हमारे श्रोता हैं सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सावले, अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और सुनील जनागल, बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा, आकाश और इनके परिवार के सदस्य, झरनिया खरगोन मध्य प्रदेश से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन और समस्त परिवार, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, राजापेट अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप लकड़े, सुरेशा, शुभम, सारंग, विराज और इनके परिवार के सदस्य, बैतूल मध्य प्रदेश से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम मन भावन का, और अब आपकी अगली फरमाइश हम सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। HD बर्मन ने संगीत दिया है और शब्द है मजरू सुल्तानपुरी के, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता खंडवा मध्य प्रदेश से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदनी निखिल और गोरांज पंचोली। खरगोन बिस्टान के हमारे श्रोता हैं कैलाश पगारे, दुर्गा पगारे, राहुल और मनीषा पगारे। धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। अगले श्रोता जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से असलम खान दुलावत, शबीना, फिरदोस, फलक, असमा, अयान और इनके परिवार के सदस्य। वाकोड़ी महाराष्ट्र से उत्तम जमधाड़े, स्वरा, आत्माराम, ललिता और समस्त मित्र और इनके परिवार के सदस्य। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी, तन्वी और समस्त बोड़के परिवार। घंटाघर चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले हमारे श्रोता हैं परसोन से सुमित साहू, खिलान, राजेश, प्रेमबाई, करिश्मा, अजय और राज। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज, और इनके एक और साथी हैं साहिल। महाराष्ट्र के श्रोता हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में अभिमान फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710

0: सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मन भावन कार्यक्रम में श्रोताओं, अब सुनिए गोविंद मुनिस का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया आंसू बन गए फूल फिल्म का गीत, युगल स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार का। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता राजस्थान छबड़ा से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीना जी, स्वप्निल, अजय किरोड़कर और इनके परिवार के सदस्य। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा, दामिनी और इनके परिवार के सदस्य। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती भाविया और सुषमा सारथी। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं आंसू बन गए फूल फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आपको सुनवाते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। पसंद करने वाले श्रोता, शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। महाराष्ट्र अमरावती से चंदूजी हातोले, मुंबई टिटवाला से संजय हातोले, नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय वाणी, मनीष, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी खर्चे, ललिता, स्वाति और मालती चौधरी, बदलापुर मुंबई से विजय वडालकर, लता वडालकर, आजिंग वडालकर, अंबरनाथ मुंबई से आकाश रेलकर और वैष्णवी, सतारा महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, माया चौहान और इनके परिवार के सदस्य, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश, नागपुर से शैलेश वैशाली और कुमारी ध्वनि। तो आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया उपहार फिल्म का गीत, स्वर मोहम्मद रफी का है। फरमाइशी पत्र हमारे इन श्रोताओं ने लिखे हैं, डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, वांछता नगर इंदौर मध्य प्रदेश से अनिल कौचाले, साबिया, सुषमा, सीमा, स्मिता, पूजा और इनके परिवार के सदस्य, मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम, नदीम अली और जुबेद अब्बासी, दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सदस्य, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना और चांदनी नाज, बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज, करनाल से सुधीर नूतन और मालेगांव महाराष्ट्र से सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का उपहार फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम, रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे विविध भारती 101.6 MHz पर कार्यक्रम सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी ख्वाहिशमंद फरमाइशें। इसी क्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो कि हमने लिया है फिल्म एक फूल दो माली से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का स्वर है, प्रेम धवन के शब्द और रवि का संगीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे श्रोता लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, VP रंजू, अशोक, सुशील, नीलम, BK पुरी, कैलाश रमा और RS पुरी। बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मुणत, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप, दीक्षा कुश मुणत और इनके परिवार के सदस्य। नांदूरा महाराष्ट्र से नारायण भाव खड़से, रक्षा खड़से, ललिता, संजना, गणेश और मालती चौधरी। आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, आशालता, सुषमा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, आयुष, उमंग और ओम प्रकाश। तेलंगाना से सुनने के ख्वाहिशमंद है मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद रुगनुद्दीन, फजान, फरहान, समीरा, आजमीन और अजीज। छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, खुमेंद्र, तुषारणी और इनके परिवार के सदस्य। छत्तीसगढ़ के ही श्रोता हैं रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान। अगले हमारे श्रोता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। अगले हमारे श्रोता हैं नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हीरालाल खेराजानी, पुष्पा और गौरव खेराजानी। बीड शहर से रणजीत कुमार नामदेव, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और इनके साथी। तो आइए सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म का गीत जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

गंगा की लहरें। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। चित्रगुप्त का संगीत है और मजरूह सुल्तानपुरी का गीत रचना है। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता जलगांव महाराष्ट्र से पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, आरती, नीरज ठाकुर, नव्या ठाकुर, दियान तुषार, श्याम, मनीषा, प्रकाश सूर्यवंशी, आरोही और समस्त सूर्यवंशी परिवार। नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय और रोशनी प्रांजल। देवास के हमारे श्रोता हैं राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन। देवास के श्रोता हरिराम माली, विष्णु, कपिल और निरंजन, गोपाल, गोविंद, सालगराम, दशरथ और इनके परिवार के सदस्य। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर। महासमुंद से वलीउल्लाह, डब्लूउल्लाह और परवीन। बुलंदशहर से बदरू अली अंसारी और फर्जू अली अंसारी। तो आइए सुनते हैं गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के शब्द हैं और रवि का संगीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता श्री रोकड़ेश्वर नगर पांगरा शिंदे से, तहसील वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से, रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टीकू इंगोले, रमाबाई मयूरी, सुरभि मंजूषा, नामदेव राव, मास्टर विलास और सुनील जबड़े, अशोकनगर वसमत हिंगोली के ही श्रोता हैं दीपाली राजू, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू और इनके परिवार के सदस्य, झुमरी तलैया से चकुली इंगोले, देव इंगोले, रामचंद्र इंगोले और महेंद्र चौरसिया, नांदेड़ के हमारे श्रोता हैं प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, ततरेंगी से भागवत वर्मा, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, इंदौर के ही श्रोता धमेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, हनी, अमिता, जिम्मी, दियाना, जियांश और इनके परिवार के सदस्य, राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल, पंजाब के श्रोता हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर गुरचरण और रमेश मिगलानी, शांतिपुरा से सुभाष गोड़िया, विजय रोड से मुकुंद कुशवाहा और इनके साथी, प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का महेंद्र कपूर का गाया हमराज फिल्म का ये गीत।

हमराज फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए अपने मित्र मयंक शर्मा को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग रागेश्री।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग रागेश्री। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी
1: जी विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
2: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर

लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। यूनियन मिनिस्टर डॉ जितेंद्र सिंह हैज अपील्ड टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ द एनईईटी पेपर लीक इश्यू टू कम फॉर टॉक्स, सेइंग गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशंस ऑन ऑल इश्यूज। Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
0: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग, द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जेपी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
1: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड इट्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्वड इन एनईईटी पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री। His statement comes amid ongoing student protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government had acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra Modi's announcement of fast-track courts is intended to reassure students and their families that those responsible for undermining the sanctity of examinations will be punished.